ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 7, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदनवार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

presentan. गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास। भक्ति संगीत।

6:45 पर आप आनंद उठाएंगे संगीत सरिता कार्यक्रम का। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक 7 बजे। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र आपको लिए चलेंगे समाचार प्रभात में। और 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको अपडेट प्रोग्राम आज का अखबार में। 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। आपका पसंदीदा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ प्रस्तुत किया जाएगा 10:05 पर और विषय रहेगा साफ रहे ड्रेनेज का हर द्वार, बरसात बनेगी सुखद त्योहार। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुन सकते हैं 11 बजे। 11:15 पर गैर फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरबहार प्रस्तुत किया जाएगा। 11:30 पर आप सुन सकते हैं संजीवनी।

12 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा 12:05 पर। प्रादेशिक हिंदी समाचार 1:05 पर और आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार। 1:15 पर आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। 2 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे 2:15 पर और 2:30 पर सदाबहार नगमे। तीन बजे आप आनंद उठाएंगे कार्यक्रम सखी सहेली का और 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज प्रस्तुत किए जाएंगे आज के मेहमान। 5 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे 5:05 पर। फिल्म संगीत लेकर हाजिर होंगे 5:20 ये समय रहेगा कार्यक्रम लम्हे का और 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत किया जाएगा।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एक बार फिर लेकर हाजिर होंगे हिंदी में समाचार साय 6 बजे। 6:10 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन सकते हैं और 6:20 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन पाएंगे। 6:30 पर पंजाबी गीतों का आनंद आप उठाएंगे। 7 बजे सुनना ना भूलेगा कार्यक्रम जयमाला। 8 बजे हवा महल और उससे पहले 7:47 पर रेडियो डायरी आप सुन सकते हैं। 8:15 समय रहेगा चित्रलोक का। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे छाया गीत और 10:32 पर सुर सांझ। तो यह है आज प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। संत जन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज प्रस्तुत है तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार, आज हम राग भैरव के बारे में बातचीत करेंगे। भैरव के बारे में कहना तो है बहुत, उसका अगर वादी संवादी देखा जाए तो इसके देवता और ऋषभ वादी संवादी है, लेकिन राग का जो पर्सनैलिटी है वो मध्य पे बहुत निर्भर होती है। तो मैं एक बंदिश गा रहा हूँ।

अभी इस बंदिश की जो सम है वो मध्यम पे ही है, निर्भर होती है, और हर एक ऐसा समझ है कि वो ऋषभ दैवत वादी संवादी होने की। लोग ऐसे कहते हैं कि ऋषभ दैवत बहुत आगे आना चाहिए, लेकिन मध्यम के बिना ये हो नहीं सकता है। भैरव, भैरव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भैरव में मध्यम।

ऐसे बहुत सारे पारंपरिक बंदिश है जिसमें हर एक बंदिश में कोई ना कोई बात ऐसी बंदिश में मिलेगी कि जिससे राग में बढ़ावा ही मिलता है उससे। अभी ये मध्यम प्रोमिनेंट जो भैरव में है वैसे दूसरों भी राग है जो कि राग गौड़ मल्लार, इसमें भी मध्यम प्रोमिनेंट है।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज आपने इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राजदेव।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: दी ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे बॉय
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: RBI कहता है
7: तरो से ही

0: शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी को यूनुस खान का नमस्कार। 29 जुलाई का दिन, आज का दिन याद का दिन है एक जाने माने अभिनेता का, बदरुद्दीन काजी, जो जॉनी वॉकर के नाम से जाने गए फिल्मी दुनिया में। मुंबई में बसों में कंडक्टर हुआ करते थे बदरुद्दीन काजी, और जब फिल्मी दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को खूब हंसाया। जिंदगी का एक फलसफा, उस गाने के जरिए जो जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। फिल्म का नाम भाई बहन, साल 1959, साहिर लुधियानवी, एम दत्ता।

जॉनी वॉकर के लिए मोहम्मद रफी जब गाते थे तो यूं लगता था जैसे मोहम्मद रफी नहीं, खुद ये जॉनी वॉकर की आवाज है। न जाने कितने गाने जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए। कॉमेडियन होने के बावजूद फिल्मों में उनकी अपनी एक खास जगह, एक खास पहचान हुआ करती थी। उनके लिए खास तौर पर रोल लिखे गए और उनके लिए खास तौर पर लिखे गए गाने।

भाई ये गाना आपने सुना, लैला की उंगलियां बेचूं, घर की लाज फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और रवि की तर्ज थी। अगला गाना भी रवि का ही स्वरबद्ध किया हुआ है, मोहम्मद रफी ने इस गाने को लिखा, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा, मोहम्मद रफी ने गाना आशा भोसले के साथ गाया है। घर संसार फिल्म का ये गाना भी कुछ अनूठे जुमले लेकर आता है, क्योंकि जब पर्दे पर जॉनी वॉकर हो तो लहजा मजाहिया होगा गाने का, होंठ गुलाबी गाल सुनहरे,

अल्लाह, पाक चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

0: एनी के बोलते रवि की तरह फिल्म का नाम था चौथवीं का चांद। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले भी सही।

आए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा

चंदन फिल्म का ये गाना था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था और मदन मोहन की तर्ज थी। आपको बता दें, सुबह 9:30 और रात 9:30 पर जॉनी वॉकर पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। आज जॉनी वॉकर के साथ साथ हम याद कर रहे हैं संगीतकार सुधीर फड़के को भी।

0: अभी ये चूड़ियां फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल थे सुधीर फड़के की तर्ज थी। और आज भले पहली तारीख ना हो, पर बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि पहली तारीख वाला जो गाना है किशोर कुमार वाला, उसके संगीतकार सुधीर फड़के हैं। कबर जलालाबादी ने इसे लिखा। तो जुलाई की 29वीं तारीख को गाना पहली तारीख का।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना, आज पहली।

गीत है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

पैसा जरा लाना, ओ पैसा जरा लाना, लाना लाना, ओ पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

0: मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

मिर्जा सुल्तानपुरी के बोलते ओपी ने ईयर की तर्ज फिल्म का नाम था आरपार।

0: शैलेंद्र की बोल थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें सलील चौधरी की तर्ज। फिल्म का नाम था मधुमती।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त। इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अजनबी फिल्म का ये गाना था। आनंद बख्शी की बोल थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: अब सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के

0: की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण

0: की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र

0: और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या

संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: लेकिन आप तो जिंदा हैं।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।

आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यही समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HPTDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुने।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
3: छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे।
0: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

आइए सुनिश्चित्र लोक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरुओं को प्रणाम करने का दिन, उन गुरुओं को जिनसे आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने आपको जिंदगी का फलसफा सिखाया, जिंदगी जीने का हुनर सिखाया, कोई कला सिखाई, उन सभी गुरुओं को नमन करने का दिन भी है। और इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है। बहुत सारी बातें करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। इस गाने के साथ करते हैं शुरुआत। उम्मीद है आपके शहर में भी होगी बारिश और भीगे हुए दिन चल रहे होंगे। सुनिधि चौहान की आवाज, इरशाद कामिल, संदेश शांडिल्य, फिल्म का नाम चमेली।

चमेली फिल्म का ये गीत आपने सुना और कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी खबर, और वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मेडल आने का सिलसिला लगातार जारी है। और एक बड़ा कमाल ये हुआ है कि लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर की दौड़ में मेडल जीता है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। उन्होंने ये रेस 27 मिनट 49 सेकंड में पूरी की, 10,000 मीटर की ये दौड़। ये पहली बार है 1986 के बाद कि कोई भी अफ्रीकी खिलाड़ी टॉप 3 में जगह नहीं बना पाया और गुलवीर सिंह ने जीता मेडल। आपको बता दें कि गुलवीर ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं।

विक्रम चित्रलोक फिल्म ओंकारा की रिलीज के 20 बरस पूरे हुए। साल 2006 में 28 जुलाई को रिलीज हुई थी ये फिल्म और आज भी इसके गाने हमारे दिल के करीब।

0: आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है आज, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: माई मेरी माई रे,
1: स्वानंद किरकिरे की आवाज।
3: तेरी याद आई।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
0: विविध भारती से चित्र लोगों को रब गूंज रही है। शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़।

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर,
6: छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे।
7: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन

प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब अंकित तिवारी की आवाज। फिल्म का नाम है एक विलन।

सुबह के 9:24 हुए हैं। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के संग हैं और शान की आवाज गूंज रही है जो किसी के मुस्कुराने की बातें कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: लीजिए पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार कार्यक्रम

0: ये प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: आज का अखबार।
1: श्रोताओ, आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज के दौर में हर कोई आसपास सुकून भरा वातावरण चाहता है। घना जंगल, उनमें तेज बहती हवाएं, नदी की कलकल ध्वनि और पंछियों की चहचहाहट। लेकिन जरा रुकिए और बताइए, क्या जंगल बिना जंगल के राजा के कभी पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी एक दहाड़ ही बता देती है कि वो है, इसलिए जंगल जिंदा है। आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इस दिन की स्थापना हुई थी। उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को बचाना और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना। हम अपने घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे बंद करते हैं, पानी बचाने के लिए नल बंद करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जंगलों की सुरक्षा कौन करता है? उसका सबसे बड़ा प्रहरी बाघ। बाघ केवल एक खूबसूरत वन्य जीव नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे जंगल के स्वास्थ्य का प्रतीक है। जहां बाघ सुरक्षित रहता है, वहां जंगल संतुलित रहता है, और जहां जंगल सुरक्षित है, वहां नदियां, वर्षा, स्वच्छ हवा और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में इंसान लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ प्रकृति भी मुस्कुराए। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और बढ़ते मानव हस्तक्षेप ने बाघों के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। और इन सब बातों के होने के बावजूद सबसे खुशी की बात यह है कि संरक्षण के प्रयासों से बाघों की संख्या में सुधार देखने को मिला है। और ये बताता है कि जब समाज और सरकार मिलकर प्रकृति के लिए काम करते हैं तो सकारात्मक बदलाव संभव है। जंगल का राजा भले ही बाघ हो, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के राजा तो हम सब हैं। और दिल है हमारा शेर जैसा, जो चुनौतियों से नहीं डरता। बाघों के संरक्षण की इस बड़ी चुनौती से भी हम जल्द ही पार पालेंगे और समझेंगे जंगलों और इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आज का अखबार कार्यक्रम में अब रुख करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर 4 से 12 अगस्त तक सभी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मंगलवार को एक ही दिन में 1 स्वर्ण समेत 6 पदक जीते। पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में 9.81 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। कॉमनवेल्थ गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर सर्वेश ने 2.25 मीटर की लगाई जंप, सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने सर्वेश। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का मुकाबला 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक जिनेवा में खेला जाएगा। भारतीय फुटबॉल लीग 2026-27 का प्रारंभ 16 अक्टूबर से होगा। $4.7 अरब से बना गॉडी हॉवे इंटरनेशनल ब्रिज खुला,

कनाडा अमेरिका के बीच व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार। जापान में गत मंगलवार 7.1 तीव्रता का भूकंप, 50 घायल, 45,000 घरों की बिजली ठप, सुनामी की भी चेतावनी। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कार्यक्रम आज का अखबार में अब रुख करते हैं क्षेत्रीय खबरों की ओर। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में गत मंगलवार को 26 में से 22 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। 30 लाख रुपए तक की ईवी खरीदने पर वाहन कर माफ। एमएसएमई से 5 लाख रोजगार का लक्ष्य। 13 साल बाद बदला हाउस टैक्स का फॉर्मूला, अब कलेक्टर रेट से तय होगा। हरियाणा में 3 लाख रुपए तक की आय वाले 4 लाख परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने, अपात्र परिवारों की जांच शुरू। पंजाब में बिजली क्षेत्र की निगरानी सख्त और पारदर्शी बनाने को PSERC का बड़ा फैसला। PSPCL छोड़ सभी लाइसेंस धारकों को अब 50 लाख रुपए सालाना शुल्क देना होगा, सुनवाई भी होगी डिजिटल। पंजाब सरकार ने NCC स्नातकों के लिए स्टेनोग्राफी की मुफ्त ट्रेनिंग। 27

इसको वॉक इन इंटरव्यू। 20 अगस्त तक आवेदन का मौका और 80 सीटों पर होंगे दाखिले। पंजाब और हरियाणा में बारिश से तापमान 3 डिग्री तक गिरा, आज के लिए भी अलर्ट जारी। भारी बारिश से हिमाचल में 7 लोगों की मौत, 230 सड़कें हुई बंद। रोपड़ की सांधवी ने तुर्की की सबसे ऊंची 5,137 मीटर चोटी माउंट अरारात फतेह की, दुनिया में सबसे कम उम्र में विश्व रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा आबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने की मंजूरी, पटवारियों की ट्रेनिंग 1 साल होगी और वेतन भी पूरा मिलेगा। हिरासत में मौत पर अब मुआवजा 7.50 लाख रुपए। दिव्यांग जनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के मामले में हरियाणा ने किया बेहतर प्रदर्शन। प्रदेश में 2,794 दिव्यांगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ, फतेहबाद टॉप नूह में सबसे कम। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी क्षेत्रीय खबरें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आज का अखबार कार्यक्रम में अब बारी है स्थानीय खबरों की। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत स्टेट मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम का पहला फेज किया पूरा। 70 अफसर बने स्टेट मास्टर ट्रेनर, अब 18,000 कर्मचारियों को देंगे ट्रेनिंग। स्टेट टेबल टेनिस के मुकाबले 31 जुलाई से शुरू। नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू, 31 जुलाई को हाउस में रखे जाएंगे 4 नोटिफिकेशन। डड्डू माजरा के लीचेट की 24 घंटे होगी लाइव मॉनिटरिंग, 42.32 लाख रुपए से लगेगा ऑनलाइन सिस्टम। अब थिंक टैंक तय करेगा चंडीगढ़ के विकास का रोडमैप, नीति आयोग व बड़े संस्थानों के साथ मिलकर तय होगी डेवलपमेंट पॉलिसी। चंडीगढ़ में पिछले कल 1.5 घंटे में 45.6 mm बारिश, सड़कें डूबी, कई पेड़ गिरे और 2 दिन भी ऑरेंज अलर्ट। पीयू में MBA प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। आड़ी तिरछी पार्किंग पर नगर निगम का शिकंजा, 54 बिंदुओं की चेकलिस्ट लागू, हर पार्किंग की होगी नियमित निगरानी, 15 दिन में कमियां दूर कर ATR सौंपने के निर्देश। श्रोतो, आज है गुरु पूर्णिमा, इसी पावन तिथि को महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इन्होंने वेदों का संकलन और वर्गीकरण कर भारतीय ज्ञान परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया। उनके अमूल्य योगदान के कारण उन्हें आदि गुरु का सम्मान प्राप्त है।

0: आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या

0: संख्या 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गई। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउंट में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617।

0: 1-866-0619 हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार। हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।

0: श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: श्रोताओ, हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सबको इस महीने में इंतजार रहता है बारिश की झमाझम बूंदों का। और बरसात की जब बात हुई है तो बरसात से याद आती हैं ठंडी हवाएं, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली और प्रकृति का मनमोहक रूप। बारिश की पहली फुहार हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। बच्चों की अपनी ही मस्ती होती है, किसान अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं और शहर की रौनक भी मानो नई ऊर्जा से भर जाती है। लेकिन यही बरसात तब परेशानी का कारण बन जाती है जब हमारे आसपास की नालियां जाम हो जाती हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, आवाजाही प्रभावित होती है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या केवल बारिश जिम्मेदार है या फिर हमारी कुछ छोटी छोटी लापरवाहियां भी इसकी वजह बनती हैं। दरअसल रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर पूरे मोहल्ले और शहर पर पड़ता है। पॉलिथीन, प्लास्टिक, बोतलें, खाने का बचा हुआ सामान और बाकी कचरा नालियों में या उसके आसपास हम फेंक देते हैं। जल निकासी व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। परिणाम ये होता है कि थोड़ी सी बारिश भी जल भराव का कारण बन जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर आज आपसे बात की जाए। विषय है, साफ रहे ड्रेनेज का हर द्वार, बरसात बनेगी सुखद त्योहार। इस विषय पर आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं, अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं और साथ में हम सुनवाएंगे आपको गीत संगीत। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। STD कोड है हमारा 0172। और कार्यक्रम में फोन लाइंस ब्लिंक होनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे लिसनर्स बिल्कुल तैयार हैं अपने दिल की बात कहने के लिए, तो करते हैं उनसे बात। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम?
1: नमस्कार जी, मैं अरविंद कुमार गांव मोर महल से बोल रहा हूँ जी।
0: अरविंद जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे, स्वागत है आपका।
1: मैडम जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपने आसपास और ड्रेन वगैरह की साफ सफाई रखें, उनमें कचरा जाने से रोकें, जिस ताकि पानी भराव ना हो, जल भराव ना हो। जल भराव होगा तो बीमारियां आएंगी, मलेरिया आएगा, डेंगू आएगा।
0: क्योंकि
1: इसीलिए कहते हैं कि साफ, अपने घर के आसपास, शहरों में तो चलो ड्रेने हैं, बड़ी बड़ी नालिये, ड्रेने सभी साफ रखें।
0: जी जी अरविंद जी, अगर आपने न्यूज़पेपर के पन्ने पलटे होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी कल ही बारिश हुई, कई जगहों पे जल भराव देखने को मिला, जिससे जो यातायात व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है ना। ट्रैफिक लग जाता है, जो हमारी सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं। तो ये किसी तरह की जो कमियां हैं कहीं ना कहीं हमारी भी रहती हैं, कि जो भी बॉटल हमने ली या हमने कुछ खाया पिया तो वो हम जो सीवरेज है उसमें डाल देते हैं
1: जी।
0: और इससे पानी जो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: इसमें ये भी है, दुर्घटना होने का भी डर रहता है, एक्सीडेंट वगैरह का, क्योंकि पानी जल भराव हो गया तो पता नहीं लगता है कि कहाँ खड्डा है, क्या है।
0: बिल्कुल

0: रहती है।
1: जी, बहुत मुश्किल रहती है। तो उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी देंगे भी, और थोड़े से सजग हो जाएंगे, है ना?
0: बिल्कुल जी, और साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल
1: बिल्कुल, साफ सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू होने ही वाला है, और अगर आसपास हम सफाई नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी, है ना?
0: जी बिल्कुल जी
1: जी, धन्यवाद अरविंद जी।
0: बिल्कुल जी, मैम धन्यवाद।
1: जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैडम मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, संकट मोचन शिमला से।
1: अरे वाह, क्या बात है प्रदीप जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर बरसात के मौसम में, क्योंकि ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे एक तो ये मच्छर कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं और उससे बीमारियां कई तरह की फैल जाती है। और ये जो हम कचरा वगैरह नालियों में फेंकते हैं ना मैडम,
1: जी
0: और जब ये बरसात होती है तो वो सारा जो है वो मतलब रास्ते में आ जाता है और वो
1: हाँ
0: पानी भी सारा रास्ते में आ जाता है।
1: जी, जिससे राहगीर जो होते हैं उन्हें बड़ी मुश्किल आती है।
0: जी
1: प्लेन्स
0: मैम,
1: प्लेन्स में तो
0: जी
1: ये
0: मैम,
1: होता है कि सड़कें ही तालाब बनती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये होता है कि वो पत्थर, मिट्टी, वो जितने भी पॉलीथीन वगैरह या बॉटल्स हैं
0: वो
1: वो सारी
0: अपने साथ ले
1: सड़क
0: आती
1: पे,
0: है
1: हाँ,
0: बरसात,
1: और
0: अपने साथ ले आती है जी।
1: वो देखने में बहुत गंदा लगता है, और ऐसे में दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है कि वो जो पानी, मिट्टी, पत्थर, जो
0: जी
1: भी
0: मैडम,
1: कचरा है जो नालियों के थ्रू बाहर नाले में जाना चाहिए, वो
0: जी मैम,
1: बच्चे चल रहे हैं उनको भी लग सकती है उनसे चोट।
0: हाँ लोग पैदल चलते हैं मैडम और जो गाड़ियां वगैरह चलाते हैं उनको भी खतरा रहता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इसलिए हमें तो अपने आसपास जो है सफाई बनाए रखनी चाहिए
1: जी।
0: और ये हमें आने वाली पीढ़ी को भी इस बारे में बताना चाहिए ताकि वो भी जागरूक हो पाए।
1: बिल्कुल, और बरसात इतना खूबसूरत मौसम रहता है बरसात का कि हर कोई इसमें भीग कर बिल्कुल
0: जी
1: स्वच्छ
0: मैम,
1: हो
0: जी
1: जाना चाहता है, तो हम
0: मैम, जी
1: खुद
0: मैम,
1: ही आनंद ना उठाएं, प्रकृति को भी आनंद उठाने दें, है ना, इस मौसम का।
0: बिल्कुल, प्रकृति जिंदा है तभी हम भी जिंदा है मैडम।
1: जी, तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रदीप जी।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू वे, थैंक यू।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में स्वागत है आपका।
2: भूमिका ठाकुर जी नमस्कार।
1: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ। मैडम
1: बिंद्रा जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैडम, जो हमारे शहरों की स्थिति है आजकल, ये जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव है।
1: बिल्कुल सही।
2: हर छोटे बड़े शहरों में गांवों से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुई है शहरों की तरफ
1: जी।
2: तो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो नाकाफी साबित हो रही है
1: जी।
2: और उसमें भी हम अपना योगदान देते हैं कि प्लास्टिक हो, घर का बचा हुआ खाना हो, सब नालियों में फेंकते हैं। तो इस वजह से परेशानी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
2: एक तो जनसंख्या का दबाव और हमारी नासमझी की वजह से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है
1: जी,
2: सड़कों पे पानी आ जाता है और सभी लोगों को परेशानी होती है।
1: वैसे एक चीज देखी जाए सतपाल जी, चंडीगढ़ जो शहर है अपनी हरियाली और चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता है और सेक्टर्स को इतने अच्छे से सुव्यवस्थित किया गया है कि इसकी जो शहर की सुंदरता है वो बिल्कुल बनी रहती है और पानी भी आसानी से निकल जाता है। सारे पूरे देश में जाना जाता है ये अपनी सुंदरता और अपनी सिटी के लिए, लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सुचारू रहे इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नाले हैं या जो नालियां हैं उनमें हम बिल्कुल भी कचरा ना जाने दें, है ना, ख़ास तौर से प्लास्टिक, क्योंकि वो गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है और वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है।
2: ये देखिए मैडम, ये विडंबना है, हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के कुछ फायदे भी हैं नुकसान भी हैं
1: जी।
2: पहले हम अखबार के, न्यूज़पेपर के बने लिफाफे यूज करते थे
1: जी,
2: और वो इजीली डिस्पोज ऑफ हो जाते थे। अब समस्या ऐसी आप पड़ी है कि चिप्स से लेके कोई भी आप खाद्यान्न लेते हैं शॉप से, हर चीज 1 किलो की पैकेजिंग, 0.5 किलो की, 500 ग्राम की, 50

0: ग्राम की सब प्लास्टिक के रैपर्स में पैक मिलेंगी आप
1: जी।
0: तो खुला जो हमारा जो पहले राशन का सामान मिलता था, खाद्यान्न मिलते थे
1: जी,
0: वो अब बंद हो चुका है और सब पैकेजिंग में आ गई है बात
1: जी। अब हमने पंसारी के पास जाने के बजाय अब मॉल्स में जाना शुरू कर दिया जहाँ पे पैकेट्स में हमें सारा सामान मिलता है।
0: और पंसारी भी मैडम अब मजबूर है कि कौन घड़ी घड़ी तोले तो पैक करके रख दो, कस्टमर आए तो उसे पकड़ा।
1: जी जी जी।
0: तो ये है मैडम, अब आबादी का भी दबाव है, पंसारी के पास टाइम नहीं है, मॉल वालों के पास टाइम नहीं है, और ये लेकिन जो प्लास्टिक बनाया गया इसको डिस्पोज ऑफ करने की भी सरकारें कोशिश कर रही हैं
1: जी,
0: इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, लेकिन इनकी जनरेशन इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा मात्रा में यूज होती है कि इनको डिस्पोज ऑफ करने में समय लगता है और ये चारों तरफ बिखरी हुई मिलती है।
1: बिल्कुल, और कई चीज़ों को पैक करना मजबूरी भी है हमारी कि पैकेजिंग करनी ही पड़ेगी उन चीज़ों की। चलिए वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अहम रोल अदा करता है, ये जो हमारी नदी, ये जो हमारी नालियां हैं, ये जो हमारे नाले हैं उसको ब्लॉक करने में, है ना। तो
0: मैडम मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा बेटा कनाडा गया था, वहां से जब वापस आया
1: जी
0: तो उसने आइसक्रीम खानी या चिप्स खाना उसके रैपर को जेब में रख लेना।
1: बहुत खूब।
0: तो मैंने बोला भाई ये तुमने नया सिस्टम चालू किया है, एक बात क्या है
1: जी।
0: बोलता पापा ऐसे घर में जाके डस्टबिन में फेंकेंगे हैं, बाहर में कोई लोग
1: जी
0: बाहर नहीं फेंकते, सड़कों में नहीं फेंकते हैं
1: जी,
0: वहाँ ये बुरी बात मानी जाती है और कहीं कहीं तो जुर्माना भी लगता है।
1: और ऐसा होना चाहिए। हम ये तो आपने आइसक्रीम कहा, हम कई बार टॉफी कैंडी उसका रैपर लेंगे खाएंगे कि छोटा सा कागज तो है, तो हम उसे भी बाहर फेंक देते हैं, या चॉकलेट खाएंगे बाहर फेंक दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी बेहद जरूरी हैं, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, जहां से भी अच्छी चीज मिले, ज्ञान मिले, उसे सीखना चाहिए।
0: और मैडम मैं थोड़ा सा आपका समय आज और लेना चाहता हूँ कि ये हम एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है, कनाडा में ऐसा होता है, वहाँ सफाई बहुत है, लेकिन अपने देश में जब आते हैं तो वो हम आते भूल जाते हैं और लोगों को बताते नहीं है कि वो देश क्यों इतना साफ सुथरे है, वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तभी सुधार आएगा। मैं
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें जानना ज़रूरी है और उसका बिल्कुल अडिग रूप से पालन करना ज़रूरी है।
0: जी मैडम।
1: सतपाल जी, शुक्रिया अपने विचार साझा करने के लिए।
0: थैंक यू मैम, थैंक
1: यू। आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615 और 2660617 और 2660619, एसटीडी कोड है 0172। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: मोनिका जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ।
1: जी सुरेंद्र जी, हाँ जी बोलिए, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे, स्वागत है आपका।
2: आज के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरसाती मौसम में अक्सर पानी तो ब्लॉक, पानी की वजह से ब्लॉक हो जाती है सड़कें। उसका कारण ये है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जो सड़कें ब्लॉक क्यों होती है, ये छोटा छोटा घर से जो कूड़ा चलता है वो नालियों में जमा हो जाता है, जैसे कि जाली लगी हुई है उसके ऊपर कूड़ा जमा हो गया, वो बाहर नहीं निकला
1: जी।
2: तो हमें मदद लेके कर्मचारियों से, या कर्मचारी जो बाहर हमारी मदद करते हैं उनका साथ दें, तो पानी का बहाव तेज हो जाएगा और पानी चला जाएगा, खड़ा नहीं होगा जी।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बेहद जरूरी है सुरेंद्र जी। जी तो उम्मीद कर
2: सड़क नहीं होंगे तो पानी तो बहेगा नहीं, पानी बहुत देरी लगेगी, जो एकदम पानी चला तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी जी।
1: सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही। तो उम्मीद है कि ऐसे ही विचार हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो रखेंगे कि कैसे हम इस समस्या से निपट सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
2: हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू।
1: श्रोताओं, अब धीरे धीरे बरसात का मौसम अपने चरम सीमा पर आना शुरू हो चुका है, और बरसात के मौसम में जहां खुशियां आती हैं वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं, तो ख्याल रखिए जी, इसीलिए हमने आज ये टॉपिक रखा है। और अब त्योहारों का मौसम भी आने वाला है, घरों की साफ़ सफाई होगी, सजावट होगी, बाज़ारों में रौनक होगी और लोग खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन यदि ड्रेनेज बाधित हो जाए तो वही खुशियाँ हमारी असुविधा में बदल सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम घर की

सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई का भी ख्याल रखें। और इसी तरह से छोटी छोटी कहानियां हमसे बयां करते रहिए, बारिश के मौसम में कैसे हम साफ सफाई रख सकते हैं और ड्रेनेज का जो द्वार है वो साफ हो। बहुत सी प्यारी प्यारी कहानियां रहती हैं बरसात के मौसम में, हर किसी के दिल की बात जुबां पर आती है और अपनी कहानी हर कोई कहता है। इस गीत में कौन सी कहानी है आप भी सुनिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में स्वागत है आपका।
2: हेलो
1: जी।
2: जी मैं अशोक बोल रहा हूँ सेक्टर 42 से।
1: जी अशोक जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

0: हाँ जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है।
1: जी धन्यवाद।
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में आप एक कपड़े का थैला लेके शुरू कीजिए।
1: जी
0: जैसे सब्जी मंडी जाते हैं तो आप थैले में सब्जी वगैरह लें,
1: जी
0: वहां से प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद आप जैसे जैसे जैसे दिन चढ़ता है, कोशिश करें कि बेकरी के बिस्कुट वगैरह खाएं, वो प्लास्टिक रहित होंगे।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी शुरुआत करें। पहले ये जो ब्रेड थी ना, ब्रेड भी हमें पीसीस में मिलती थी बेकरी से, वो उसमें पॉलिथीन नहीं लिपटा होता था।
1: जी
0: ऐसे शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। ये जो दूध के पैकेट आते थे ना, पहले बॉटल्स आते थे
1: जी,
0: बॉटल्स में दूध मिलता था, वही बॉटल रिटर्न होती थी। इससे इसके पॉलिथीन थे ना, वो कूड़े के ढेर तक नहीं पहुंचते।
1: और आज भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि हमें उसी रूप में प्राप्त होता है दूध, है ना।
0: हाँ, बॉटल्स में,
1: कई बॉटल्स में देते हैं,
0: किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर से कांच की बॉटल चलाई जा सकती है। ये जो कोक की बॉटल्स हैं, ये भी अगर कांच की बॉटल में तब्दील कर दी जाए, ये जो वेस्ट जाती है बॉटल्स, तो वो भी कम हो जाएंगी। शुरुआत करने से ही होगा।
1: बिल्कुल, ये छोटे छोटे प्रयास जो हैं बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: हाँ, ये दाले भी हम खुली लेते रहे हैं, ये जो पॉलिथीन में आती है दाले,
1: जी
0: ओपन में दाले, बोरों में दाले, और उसके बाद थैले में, कपड़े की थैली में
1: जी
0: दाले आ सकती है अगर कंपनी चाहे तो।
1: बिल्कुल। हम
0: छोटी किलो की थैली, 1.5 किलो की, 2 किलो की थैली कपड़े में आ सकती है। आजकल तो बैग भी ऐसे आने लगे हैं जो कि रीयूज हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, बैग भी रीयूज हो जाते हैं, और जो हम पहले अखबार के कागज के जो पैकेट थे वो बनाए जाते थे, लेकिन अब जो उससे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है उस तरह के पैकेट्स भी आ रहे हैं कागज के।
0: अच्छी अच्छी क्वालिटी के लिफाफे उपलब्ध हैं और यूज किए जा सकते हैं।
1: जी जी, तो
0: इसे इसे बहुत कम कोशिश अपने घर से शुरू करो, ताकि आपके ड्रेन में ही प्लास्टिक ना जाए, फिर तो बड़े ड्रेन में भी नहीं जाएगा।
1: जी, अगर ये चीजें ही नहीं होगी तो जड़ से ही खत्म कर दी जाएंगी। तो
0: हर बंदा अपने लेवल पे भी शुरू करे ना, तो भी ये कुछ समस्या का हल हो सकता है।
1: बिल्कुल। तो आपने ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, बड़ी काम की चीज़ें हैं, तो हो सकता है हमारे बहुत से लिसनर्स की ज़िंदगी में बदलाव आए, कुछ इन चीज़ों को अपनाते भी होंगे, इनको फॉलो कर रहे होंगे, कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि कार्यक्रम को सुन के वो ये बदलाव अपने अंदर लाएंगे, ताकि
0: अपने अपने घर से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें।
1: जी,
0: फिर देखिए धीरे धीरे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। धन्यवाद अशोक जी।
0: धन्यवाद
1: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सभी हार्दिक शुभकामनाएं, अभी भारती को आपसे शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी हमारा नमस्कार। और आपका नाम?
2: मैं हृदय बोल रहा हूँ।
1: हृदय जी, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि हृदय से आपको मुबारकबाद, तो मैंने इसीलिए कंफर्म करने के लिए फिर से आपका नाम पूछा। और बड़ा
2: नाम भी हृदय है
1: जी। और हृदय जी, आपका नाम बड़ा यूनिक है, मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी का नाम सुना है।
2: थैंक यू।
1: और बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। कौन सी जगह से कॉल किया है आपने?
2: मैं वैसे चरखी दादरी का हूँ, लेकिन फिलहाल पंचकुला में रहता हूँ।
1: जी, तो कार्यक्रम में पहली बार आपसे बात हो रही है, आज के विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बेसिकली स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ
1: जी,
2: और बहुत गहराई से सोसाइटी की चीजों को देखते, अनुभव करते और उस पर काम भी करते हैं
1: जी।
2: तो जहाँ चीजों को ठीक करने की बात है, और जो पर्यावरण और इस पॉलिथीन वाला जो जिक्र हमारा चल रहा है, जो चीज सोसाइटी में डेवलप ही नहीं होगी तो उसका यूज ही नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
2: तो गवर्नमेंट को इस तरीके की इंडस्ट्रीज को ही बैन करना चाहिए। जब प्लास्टिक आपके पास अवेलेबल, पहले पॉलिथीन था ही नहीं तो हम यूज कहाँ से कर रहे थे, है ना
1: जी।
2: न्यूज़पेपर था, ब्लैंक पेपर था, येलो पेपर आता है, खाकी पेपर आता है, बहुत सारे कागज आते हैं जिसके हम बैग बनाते हैं
1: जी।
2: हम एक छोटी सी संस्था चलाते हैं हस्तश्रम करके
1: जी,
2: जिसमें हम उन लेडी को, गर्ल्स को, बॉयज को सिलाई मशीन देते हैं, जिसमें कि वो वेस्ट कपड़ों से बैग सिलते हैं। और हम उनको 2 रुपया

0: एक रुपया पर बैग के हिसाब से देते हैं और उन बैग को हम बड़ी बड़ी शॉप्स पे ले जाकर देते हैं ताकि आप ग्राहक को ये दीजिए और इसी को यूज कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ना ही तो शॉपकीपर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, कहते हैं कि इसकी डिमांड नहीं है, कोई लाइक नहीं करता है। और ना ही घरों से हमें वो कपड़ा मिल पाता है जो हम उस कपड़े से उसको बैग को बनाए जाए।
1: जी जी।
0: क्योंकि मैं बहुत पहले उदयपुर जोधपुर में रहा हूँ, उधर मकराना साइड में रहा हूँ, वहाँ ना एक ट्रेडिशन है, वहाँ पर साड़ी दुपट्टे पैंट शर्ट जो वेस्ट होते हैं उन सबके ना बैग सील के शॉपकीपर्स को दिए जाते हैं।
1: बिल्कुल, बड़े सुंदर सुंदर बैग बनते हैं।
0: लेस लगा होता है जिसमें वो सामान बांध के ले जाते हैं और वो मतलब परफेक्ट रहते हैं
1: जी।
0: तो नालियों में भी वो नहीं जाते, रिस्पेक्टली लोग कपड़े का थोड़ा रिस्पेक्ट वैसे भी करते हैं
1: जी।
0: तो वो एक रीजन हमारा है जिससे हम इस वाली सिचुएशन में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: और रही बात पॉलिथीन की, तो देखिए हम किसी भी मंडी में जाते हैं, सब्जियां या और भी बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं, सभी में हमें 99% जो है प्लास्टिक बैग ही मिलता है, प्रिंटेड बैग मिलता है, एडवर्टीजमेंट का प्रिंटेड बैग मिलता है। वो केवल इसलिए कि उसका कॉस्ट कम है, वो सस्ता पड़ता है, इसलिए शॉपकीपर और इंडस्ट्री उसको मार्केट में अवेलेबल कराती हैं
1: जी।
0: ये एक लॉजिक मुझे लगता है कि इस पे हम अगर थोड़ा सा विचार बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो काफ़ी सही बात आपने कही। और जो ख़ास तौर से रीज़न रहता है, हमारी जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाती है, वो यही है। और उम्मीद है कि बरसात के मौसम में इन चीज़ों पर तो हम रोक लगाने की कोशिश करें ही, लेकिन ये भी कोशिश करें कि नालियों में या नालों में इस तरह का सामान हम ना फेंकें, सड़क में भी ना फेंकें, क्योंकि वहाँ से वो धीरे धीरे नालियों में ही जाएगा।
2: सेकेंडली मैम एक और था, जैसे नगर पालिका है, सभी जगह की है
1: जी,
2: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज है ना वो ट्रुथफुल जॉब नहीं करते जेंटली, मैंने बहुत बार देखा है
1: जी।
2: वो ऑन ड्यूटी होते हैं और उस ट्रैक उस ड्रेन के साथ से घूम के निकल जाते हैं, उनके पास टूल्स भी होते हैं, लेकिन वो इतनी जहमत नहीं उठाते कि उसको क्लीन कर दिया जाए
1: जी।
2: खासतौर से रेनी सीजन में, वैसे तो पूरे साल जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन रेनी सीजन में भी वो इस चीज का केयर नहीं करते। मैंने बहुत बार देखा, मैं खुद अपने हाथ से बहुत सारी मेरे सोसाइटी की नालियां मैं खुद साफ करके आ जाता हूँ
1: जी।
2: अब मैं सैटरडे संडे फ्री होता हूँ, कई बार मैं करता हूँ ऐसा जो मुझे अच्छा लगता है मन से
1: जी जी।
2: और उसका बेनिफिट मुझे तब लगता है जब बारिश आ रही होती है और वो पानी वहां से जब ड्रेन हो रहा होता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल,
2: तो निकल गया पानी।
1: हृदय जी, हमें कोई भी काम जो है वो दिल से ही करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से। जब हम उसके एवज में पैसे लेते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि वो जो हमने पैसा लिया है किसी काम को करने के लिए, तो उसे पूरी ईमानदारी से करें जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बारी है गीत की कार्यक्रम में।
0: थैंक यू थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम और इस कार्यक्रम में अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आपका नाम?
1: बंसीलाल जी।
0: बंसीलाल जी,
1: जिला बड़ा गांव चेचा मोड़ी।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। तो आज इस कार्यक्रम का जो हमने विषय रखा है कि साफ रहे ड्रेनेज का हर द्वार, बरसात बनेगी सुखद त्योहार, तो क्या कहेंगे आप, ये बात सच्ची है या नहीं?
1: हाँ सच्ची है जी।
0: कितनी सच्ची है?
1: बहुत कुछ सच्ची है जी। साफ सफाई रखो अपने, प्लास्टिक से बचो।
0: बिल्कुल,
1: तो ये प्लास्टिक फंस जाती है ना गलियों में, नालियों में
0: जी,
1: ये भी बाढ़ का रूप हो जाता है।
0: जी जी जी,
1: लेकिन सरकार ने 2018 में ये बंद कर दी थी, प्लास्टिक बैन लगा दिया था
0: जी।
1: लेकिन कोई वो तो है इसके ऊपर कंट्रोल,
0: ना
1: कोई सरकार फाइन लगाती है। जो सौदा खरीदने जाता है घर से वो भी अपना पहला नहीं लेता, शर्म समझता है पहले की, पहले की शर्म समझते हैं, भी शर्म आती है।
0: जी जी जी,
1: ये बच्चे थैला नहीं करते।
0: बिल्कुल,
1: देखो हमारी औरतें हैं, लड़की हैं, बहने जो फैंसी भी बना देती हैं थैले
0: जी,
1: हाँ जो कपड़े के थैले बहुत बढ़िया बनाती हैं, पुराने कपड़े के।
0: बिल्कुल, लेकिन हम प्लास्टिक के, आपने शायद बंसीलाल जी रेडियो सेट की वॉल्यूम थोड़ी हाई रखी है, उसके नज़दीक है, अगर थोड़ा सा आप उससे दूर जाएंगे तो ये जो इको आ रही है मुझे वो नहीं आएगी और आपकी आवाज़ सही तरीके से मैं सुन पाऊंगी।
1: दूर बैठिए
0: जी। जी जी, तो हम देखिए प्लास्टिक के पीछे पड़ गए हैं, हम थैलियों के पीछे पड़ गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकेज है ये होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि पेड़ कटे हैं या घास फूस है या पत्थर है, हम डायरेक्टली उसे साइड में रखने के बजाय या ढेर बना दें, वो नाली में चला जाता है, तो वो भी ब्लॉकेज का एक सबसे बड़ा कारण रहता है ना।
1: ये लोगों की अपनी शक्ति है, आप अपना फायदा देखते हैं लोग। वो उनके भी अपने ये नुकसान तो सबका ही, सारी अपनी पब्लिक का है। कोई बाढ़ आएगी उसमें नुकसान तो सबका होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कोई किस्सा बंसीलाल जी आपके आसपास आपने देखा हो कि अगर ड्रेनेज का द्वार खुला नहीं है, साफ नहीं है, तो कोई दिक्कत परेशानी हुई हो?
1: दिक्कत हो जाती है, हमारा नदी आती है गंदा नाला चाहे कैंट से, इसमें अपने अपने अनिल बीज हैं जी, अपने बड़े अच्छे मंत्री हैं
0: जी,
1: वो गाँव में पहले ही मशीने भेज देते हैं
0: जी,
1: जेबीसी मशीने,
0: ताकि पानी ना रुके जी,
1: ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं देंगे जी।
0: जी जी जी, बहुत
1: हमारे गांव के भी पूरी हेल्प करते हैं।
0: चलिए,
1: गांव में तो पहले ही खर्च जाते हैं कसी लेकर।
0: जी जी जी,
1: साफ सफाई के लिए
0: जरूरी है कि हम अपनी भी जिम्मेदारी समझें। अगर शहरी इलाका है तो वहां पे तो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत तादाद में, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं
1: यहाँ पर, सेवादार बहुत है हमारे गाँव में ना, जो गुरु गुरुद्वारा है, किसान है।

0: लेकिन गांव में लोग
1: बंदा टूट गया था जी पिछले साल।
0: जी जी जी जी
1: सारे ने इकट्ठे होके लगा दिया जी, कोई सरकार नहीं आई, कुछ नहीं आया।
0: बहुत खूब बहुत खूब, यही
1: अपने थैले जान के आप अपने थैले ले
0: यही जज्बा होना चाहिए बंसीलाल जी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। अब बारी है एक संदेश की, फिर करेंगे आपसे बात।
1: ठीक है, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार,
3: रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैडम, बुराया डिस्ट्रिक्ट जलंधर।
0: रविंद्र जी, आज के विषय पर क्या कहेंगे?
3: देखो जी, बरसात का मौसम जो है वो है तो खुशियों वाला, जब गर्मी के बाद बरसात आती है तो, लेकिन उस खुशियों में मतलब हमने बहुत सारे ऐसे काम कर लिए हैं जिससे हमारी खुशियाँ वो कम हो गई हैं।
0: जैसे
3: वाटर लॉकिंग की जो समस्या है वो हर शहर की समस्या है, एक शहर की नहीं है
0: जी।
3: जहाँ भी बरसात जोर से होती है तो वाटर लॉकिंग होती है, मतलब इससे अभी तक हम इतने साल आजाद हुए तो भी हो गए, लेकिन इससे अभी भी हमको निजात मिल नहीं पाई
0: जी।
3: सबसे जो मेन वजह वो हमारी गलतियां हैं। अगर हम जागरूक हो जाए तो ये वाटर लॉकिंग जो है जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकती है। हर एक आदमी जो है वो ये सोचे कि मैंने गंदगी नहीं डालनी बाहर
0: जी,
3: तो ये जो वाटर लॉकिंग की समस्या एकदम हल हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
3: हम क्या करते हैं कि अपना कूड़ा जो इकट्ठा करके है वो नाली में फेंक देते हैं, और जो सड़क पे भी हम जाते हैं तो जैसे पानी की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, वो हम सड़क पे फेंक देते हैं।
0: बिल्कुल,
3: वो आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ उड़ के वो नालियों में चली जाती है
0: जी,
3: तो नालियां एकदम ब्लॉक हो जाती है, तो उससे जो है तो पानी की समस्या हो जाती है, नालियों में पानी बाहर जा आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मिट्टी है वो उड़ा के
3: बाहर जो है
0: जी,
3: नालियां हर दुकान के बाहर है।
0: बिल्कुल,
3: लेकिन वो दुकानदार क्या करते हैं कि दुकान का जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा करके वो नाली में डाल देते हैं, बजाय डस्टबिन में रखने के, जहाँ जो भी डंप बना हुआ वहां पे फेंके
0: जी जी,
3: ऐसे धीरे धीरे करके उनका कूड़ा है जो ऊपर तक आ जाता है, तो पानी फिर कहाँ से निकलेगा? जब नालियां साफ ही नहीं होगी तो पानी निकलेगा कहाँ से? ये मतलब ये गलती हमारी है, आप प्रशासन को हम ज्यादा दोष नहीं दे सकते
0: जी।
3: तो अगर हम एक एक अकेला जो है अपने घर की सफाई करें, अपने मोहल्ले की सफाई करें, तो बाकी सरकार भी जो है वो नहरों नालों की सफाई करे
0: जी,
3: तो ये प्रॉब्लम कभी हो नहीं सकती
0: जी। बहुत जल्द तो मतलब ये परेशानी जो है उससे मुक्त हो सकते हैं हम, है ना?
3: बाकी हाँ बिल्कुल मैडम, बाकी एक बात है, मोहल्लों की जो सफाई का जुम्मा है ना, वो एक मोहल्ले का जो भी कोई पार्षद है या कोई भी VIP बंदा है उसको लेनी चाहिए, वो खुद आके सफाई करे
0: जी।
3: एक दिन ऐसा रख ले इतवार को, जहाँ जो भी आपको दिन सही लगता है वो दिन लगा ले
0: जी,
3: और मोहल्ले वालों को कहे कि एक आदमी अपना भेजो और हमने वो पूरी सफाई जो है मोहल्ले की करनी है
0: जी।
3: तो वो आप साथ मिलके अगर सफाई करें तो जो दूसरे लोग हैं उनको वही एक्सपायर होंगे वो देख के, तो ऐसे मोहल्ले की सफाई एक दिन में हफ्ते के बराबर हो जाएगी अगर हम सारे मिलकर काम करें तो
0: जी। कहते हैं एकता में बल है, और बहुत बड़ा बदलाव आता है अगर हम सारे मिलकर कोई काम शुरू करें, है ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक के करने वाला काम नहीं है, ये सभी को मिलकर करने का काम है। अगर हम सभी मिलकर करें तो हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह स्वच्छ साफ सुथरा एकदम हो सकता है
0: जी। शुक्रिया रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए,
3: धन्यवाद मैम।
0: तो दोस्तों, अपने छोटे छोटे प्रयासों से ये बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं। जब ड्रेनेज बिल्कुल साफ रहेगा, उसमें कोई भी कूड़ा करकट, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर नहीं होगी, उसको प्रॉपर जगह पर हम डालेंगे, तो ये जो बरसात की बूंदें इस धरती पर बरसेगी ना, वो इस धरती के लिए एक त्यौहार के समान होगी। हर पत्ता धुल जाएगा, मिट्टी की सौंधी खुशबू आप महसूस करेंगे। तो एक गीत अब आपके लिए है,

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। कोशिश की हमने अपने कार्यक्रम के लिसनर से जुड़ने की, लेकिन उनकी जो कॉल है वो कट चुकी है। तो चलिए, आपसे हम बात कर रहे हैं आज साफ रहे ड्रेनेज का हर द्वार, बरसात बनेगी सुखद त्यौहार, इस विषय पर। और बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो
1: हेलो
0: जी सर, कार्यक्रम का समय बहुत कम है और आप अपना नाम, कौन सी जगह से बोल रहे हैं और संदेश दें।
1: मैं सोलन हिमाचल प्रदेश कुमारकी से बोल रहा
0: हूँ। अशोक जी,
1: गौरव गुप्ता कुमारकी से
0: जी। तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आज का विषय तो मैंने जो पता नहीं लगा, लेकिन और सुनने में आता है प्लास्टिक वगैरह के बारे में बोल रहे हैं आप लोग ना, वो सुनने में आया, बाकी पता नहीं लगा अभी।
0: जी हम बात कर रहे हैं, जी जी हम गौरव जी बात कर रहे हैं कि अगर ड्रेनेज को हम साफ

0: रखेंगे तो बरसात हमारे लिए सुखद त्योहार की तरह होगी। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कम समय है हमारे पास।
1: मानो जी, अभी मैं कोई 6 दिन पहले घूम के आया लेह लद्दाख,
0: जी
1: तो वहां पे सड़कें बहुत अच्छी थी, हर चीज अच्छी थी, लेकिन लोगों ने जो वहां पे बोतलें गिरते हैं, पता नहीं एक जगह तो पता नहीं हजारों की तादाद में बोतलें बोतलें पड़ी थी वहां पे, प्लास्टिक की बोतलें इतनी थी कि बंदा कहता कि पता नहीं फैक्ट्री प्रोडक्ट कितनी, क्या करते समझ नहीं आई
0: जी। तो

0: थी वहाँ पे।
1: हम्म।
0: प्लास्टिक की बोतलें इतनी थी कि बंदा कहता कि पता नहीं फैक्ट्री की फैक्ट्री क्या कर रहा, समझ नहीं
1: आई। जी, तो कहीं ना कहीं ये मानव के जो कार्य हैं उसी से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका।
0: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।
1: श्रोताओ, आज हमने आपसे बात की कि साफ रहे ड्रेनेज का हर द्वार, बरसात बनेगी सुखद त्यौहार। सबने अपने अपने विचार साझा किए और हम देखें तो हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, आंगन और बालकनी को चमकाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में पॉलीथीन, प्लास्टिक, खाने का बचा हुआ सामान या दूसरा जो कचरा होता है वो नालियों के पास छोड़ देते हैं और यही हमारी सबसे छोटी सी जो लापरवाही है धीरे धीरे नालियों को जाम कर देती है। नतीजा ये होता है कि बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, लोगों को दफ्तर, स्कूल, बाजार जाने में परेशानी होती है और मच्छरों के पनपने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आगे से इन बातों का रखिए आप ख्याल ताकि बरसात बने हमारे लिए सुखद त्योहार। फिलहाल हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आज बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में।
3: श्रोताओं, आपने अक्सर इस बारे में अपने आसपास के गांव शहर में सुना होगा। घरेलू हिंसा का मतलब है हमारे घर या पड़ोस या कहीं भी किसी औरत के साथ मारपीट करना या उसको शारीरिक व मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाना। यह एक बहुत ही घिनौना अपराध है जो आजकल हमारे समाज में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। आज का नाटक इसी विषय पर आधारित है।
2: कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
3: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यह नाटक एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके पिता उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा उम्र के आदमी के साथ करा देते हैं। उसके बाद वह लड़की कैसे शारीरिक व मानसिक रूप से घरेलू हिंसा का सामना करती है और कैसे इस लड़ाई को जीत लेती है, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
4: अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो यह स्थिति ना होती। मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी और खुद से ज्यादा मेरी परवाह भी करती थी।
5: कोमल, ओ कोमल, कहाँ है तू? दरवाजा तो खोल, स्कूल नहीं जाना क्या? कितने दिन हो गए तुझे स्कूल गए हुए?
4: अरे सुमन, तू सब ठीक तो है ना? बहुत दिनों बाद आई है, आओ बैठो।
5: नहीं कोमल, बैठने का समय नहीं है, तुम जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है।
4: सुमन, तुझे तो पता है ना, मेरी माँ के चले जाने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ और मेरे पापा ने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया है।
5: क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तेरा स्कूल जाना बंद क्यों करवा दिया?
4: माँ के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो घर के सारे काम मुझे संभालने पड़ते हैं ना, इसीलिए तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
5: ठीक है कोमल, जैसी तेरी मर्जी, बाय।
3: कोमल सुमन के घर से जाने के बाद बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर

0: उसके पिताजी आ जाते हैं जो नशे की हालत में होते हैं। कोमल उनको ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और बिना कुछ बोले वापस अंदर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है।
1: कोमल, ओ कोमल, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे ये लोग ना मेरी सुनते नहीं है, इसकी माँ तो मर गई, अब इसका बोझ भी मुझे उठाना पड़ रहा है।
2: पिताजी लीजिए पानी।
1: रख दे पानी यहाँ पे, और अभी तक खाना नहीं बनाया? भूखा मारने का इरादा है क्या? तू भी अपनी माँ के साथ क्यों नहीं मर गई थी? मैं तो ये दुआ करते उसी दिन मर जाती तू भी।
2: पिताजी आप शराब क्यों पीते हो? आप शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि मैंने माँ को खो दिया है, मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ पिताजी।
1: अरे मेरे सामने जुबान चलाती है? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल खाना ला, और सुन सुबह तैयार रहना, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है?
0: अगली सुबह कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। जब यह बात कोमल की चाची और चाचों को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि कोमल की उम्र अभी बहुत ही कम थी और अभी उम्र शादी करने की नहीं थी, इसलिए कोमल के चाचा चाची उसके पिताजी के पास समझाने के लिए जाते हैं।
3: राजू कहाँ हो? बाहर आओ, ये सब हम क्या सुन रहे हैं? तुम कोमल बिटिया का रिश्ता कर रहे हो और हमें बताना जरूरी नहीं समझा?
0: हाँ भाई साहब, आपने हमें बताया क्यों नहीं? और लड़का कौन है और कैसा है, ठीक है या नहीं है, आपने कुछ पता भी किया है या नहीं?
4: अरे इसमें पूछने और बताने वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी है, मैं उसके लिए जो भी करूँगा ठीक ही करूँगा ना।
3: फिर भी भाई होने के नाते बता तो देते, और वैसे भी कोमल की उम्र अभी है ही क्या जो तुम्हें शादी कितनी जल्दी पड़ी है?
0: भाई साहब हम मानते हैं कि कोमल आपकी बेटी है, उसके पिता आप हैं, पर फिर भी एक चाचा चाची होने के नाते उस पर हमारा भी तो एक हक है।
4: वो तो आपकी बात ठीक है। आइए भाई साहब, आइए अंदर आइए। आपको आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
5: अरे नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। आप सुनिए, सब ठीक तो है ना?
4: हाँ जी सब ठीक है, आइए बैठिए।
6: आप जल्दी से अपनी बेटी को बुला दीजिए, हम भी तो देखें हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है।
4: कोमल बेटा जल्दी बाहर आओ।
6: आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो। भाई साहब मैं तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो रिश्ता पक्का समझें।
4: हाँ जी बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है।
0: भाई साहब आपको लगता नहीं कि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा ही है, और इसकी आंखें और शक्ल कुछ अजीब सी है, और इसकी आंखें कितनी लाल है।
4: भाभी आपको तो हर किसी में कमियां ही दिखती हैं, आपका तो काम दूसरों की कमियां निकालना है।
3: पर राजू भाई रीना ठीक कह रही हैं, मुझे भी लड़का सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है।
4: आप दोनों तो चुप हो जाओ, लड़का ठीक है और मुझे पसंद है, बात खत्म। मेरी बेटी है तो लड़का भी मेरी पसंद का ही होगा।
5: भाई साहब अगर आपकी सहमति है तो रिश्ता पक्का समझें।
4: हाँ जी जरूर, मुबारक हो, ये लीजिए मुंह मीठा करो, बधाई हो आपको।
5: आप भी कीजिए।
0: इस तरह कोमल की शादी तय हो जाती है, और कोमल के चाचा और चाची के समझाने के बाद भी कोमल के पिता उनकी नहीं सुनते और कोमल की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर देते हैं। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल चली जाती है।
6: कोमल बेटा खाना बन गया है क्या? जल्दी से खाना लगा दो, तुम्हारे ससुर जी आते होंगे।
7: जी माँ जी खाना तैयार है, आप बैठिए मैं खाना लगा देती हूँ।
8: भाभी आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
7: लौकी की सब्जी और चावल, और साथ में रोटी।
8: भाभी यह सब क्या घास फूस बनाया है, आपको पता नहीं है क्या हमारे घर में ज्यादातर मसालेदार व तली हुई चीजें बनती हैं, और जो आपने ये बनाया है ये तो बिल्कुल फीका है, ना इसमें मिर्च है ना इसमें नमक है।
6: बहू कविता ठीक कह रही है, हमारे यहाँ घास फूस नहीं खाते, क्योंकि हमारे घर में शुद्ध देसी घी में तली हुई चीजें ही और ज्यादातर मसाले वाले व्यंजन ही बनते हैं। तेरे बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या?
7: माँ जी आपको तो पता ही है ना कि मैं तो बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी हुई हूँ, मुझे तो सादा और सिंपल सा खाना बनाना आता है, ये मसालादार चटपटे व्यंजन मुझे बनाने नहीं आते।
6: बहू तुम्हें यहाँ आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तुम हमारे सामने जो

0: मकान चला रही हो?
1: ये घर मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं। यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे।
2: पर माँ जी,
1: चुप हो जाओ।
3: अरे दरवाजा खोलो, कहाँ मर गए सारे के सारे?
4: भाई आ गए आप, आओ अंदर आओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
3: मुझे भूख नहीं है। कोमल कहाँ है? कहाँ है वो महारानी?
4: सो रही होंगी महारानी, उनको काम ही क्या है। भाभी ने आज मम्मी से भी बहुत बदतमीजी से बात की। मम्मी बहुत उदास है, बोल रही थी कैसी बेकार बहू घर में आ गई है।
3: अच्छा, इस कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत होगी जो मेरी माँ को पलट के जवाब देती है और मेरी माँ को भी रुलाया। अभी बताता हूँ इस महारानी को।
2: आ गए आप, लीजिए पानी पी लो।
3: मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का पानी।
2: विनोद, आज क्या हुआ तुम्हें? आपको पता है आज क्या हुआ? माँ जी ने छोटी सी बात पर मेरे ऊपर हाथ उठाया।
3: मुझे सब पता है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ इतनी दुखी है और वो रो भी रही है।
2: पर मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा।
3: अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरी माँ को झूठी और गलत बता रही हो?
2: मेरी कोई गलती नहीं है।
3: चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी जुबान ऐसे बंद नहीं होगी, रुको जरा।
2: आए, मर गई मैं तो। माँ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मत मारो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, प्लीज मुझे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
3: नहीं नहीं, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आज जो तुम्हारी इस कैंची की तरह चलने वाली जुबान को काट कर फेंक दूंगा।
2: मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे प्लीज।
3: चलो आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मेरी माँ को कुछ कहा ना तो सच में जान से मार दूंगा तुझे।
5: कोमल सारी रात रोती रहती है और अपने जख्मों को देख देख कर जोर जोर से रोने लगती है, परंतु उसकी रोने की आवाज सुनकर भी कोई उसे देखने के लिए उसके पास नहीं आता और वो ऐसे ही सारी रात अपनी माँ को याद करते रोती रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है पर कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं आती क्योंकि पिछली रात उसके साथ शरीर पर इतने जख्म थे, कोमल से ठीक से चला ही नहीं जा रहा था। तभी उसकी सास और उसकी ननद कमरे में आ जाती है।
1: अब उठ भी जाओ, अपनी मरी हुई माँ का बहुत मातम मना लिया, अब जल्दी उठो और हमारे लिए खाना बना दो।
4: हाँ भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मसालेदार बटर नान और दाल फ्राई और पकोड़े बना दो।
6: अरे भाई, आज सुबह का नाश्ता कुछ मिलेगा या ऐसे ही पानी से पेट भरना पड़ेगा? बहू के भी आने का कोई सुख नहीं है, समय पर ठीक से मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता।
2: माँ जी, वैसे मैंने कभी ये सब चीजें बनाई नहीं, ना मुझे किसी ने सिखाया है, पर फिर भी आप सभी की खुशी के लिए मैं बना देती हूँ।
6: बहू, तुम्हें अपनी सास की बात पहले से मान लेनी चाहिए थी, अगर पहले मान लेती तो इतना सब कुछ न सहन करना पड़ता। चलो छोड़ो इन बातों को, खाना लाओ जल्दी से, बहुत भूख लगी है।
5: इस तरह कोमल को ससुराल में कई महीने गुजर जाते हैं पर कोमल की स्थिति दिन प्रतिदिन पहले से भी खराब हो जाती है। हर रोज के लड़ाई झगड़े सहते सहते कोमल तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि कोमल को लगा मैं खुद की जिंदगी खत्म कर दूं और इसी सोच के साथ वो एक कदम उठाती है।
2: हर रोज की मार पिटाई से तो तंग आ गई हूँ मैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि खुद को ही खत्म कर दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसी अपनी जान नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर जाएगा और इन सब बातों में इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है। नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी।
7: कोमल, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? और दामाजी कहाँ है और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई?
2: पिताजी, ऐसे हैवान के साथ शादी करने से तो अच्छा आप खुद मुझे जान से मार देते तो आज मुझे ये नरक वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ती।
5: देखो भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है।
8: हाँ राजू, यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने अपने नशे की वजह से बेटी को बोझ समझकर उसे नरक में फेंक दिया है।
7: मुझे आप सभी माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है जिसकी सजा मेरी फूल सी बेटी को भुगतनी पड़ी। कोमल, तुमने भी समझदारी से काम लिया है जो यहाँ वापिस आ गई और कुछ गलत कदम नहीं उठाया और बड़ा हादसा होने से बच गया।
5: इस तरह

0: राजू इंस्पेक्टर के साथ कोमल के ससुराल जाता है।
1: इंस्पेक्टर साहब, आप सब इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। इन सभी ने मेरी बेटी की ये हालत की है और उसकी जिंदगी बर्बाद की है।
2: मैं मानता हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो, हमारे होने वाले बच्चे के लिए माफ कर दो। एक मौका दे दो मुझे, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।
0: आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है।
3: तो श्रोताओं, सुना आपने एक लड़की की समझदारी और सूझबूझ ने उसको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सचमुच कोमल उन सभी औरतों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने घर में घुट घुट कर जी रही हैं, और ना जाने कितनी औरतें ऐसे हालातों को सहन नहीं कर पाती और मौत को गले लगा लेती हैं। श्रोताओं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप ऐसे हालातों से लड़ रहे हैं तो डरे ना और ना हार माने, साहस और बहादुरी से काम ले और खुद की जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू करें और जुर्म और हालातों के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने हक के लिए लड़ें और साहसी बनें।
4: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
3: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
4: आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
6: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
7: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
6: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
7: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
6: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
7: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
6: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
7: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
6: आकाशवाणी चंडीगढ़।

दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

0: ये गीत अभी आपने सुना अंकित तिवारी की आवाज में।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: सुरबहार कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब समय हो गया है कार्यक्रम संजीवनी का।
2: संजीवनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, बरसात का मौसम अपने साथ बहार लाता है, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल। तपती धरती पर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो मिट्टी की सौंधी खुशबू दिल छू जाती है, लेकिन मानसून का ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। आज संजीवनी कार्यक्रम में हम मानसून में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी में उनका इलाज, इस विषय पर बात करेंगे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथ डॉक्टर हर्षदीप कौर, जो आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल सेक्टर 34 में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा नमस्कार आप सबको।
2: क्योंकि डॉक्टर साहब, ये मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मॉनसून के इस मौसम में होने का खतरा रहता है।
3: देखिए, सबसे पहले हम सबको जो पता है बीमारियां, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिसे हम यूजुअली खांसी, जुकाम, नजला इन नामों से जानते हैं। मॉनसून के मौसम में सबसे प्रमुख बीमारियां हम कहें या सबसे कॉमनली नोटेड जो हमारे क्लिनिक्स में, हमारी यूजुअली प्रैक्टिसेस में, ओपीडी में हम रोज देखते हैं, वो ऑल ओवर द सीजन, ऑल ओवर द ईयर हमें जो दिखती हैं वो तो है ही है, पर मॉनसून में उनका ज्यादा योगदान रहता है हमारी प्रैक्टिसेस में यूजुअली। उनमें से कुछ हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर, कोविड भी टू सम एक्सटेंट, और पानी के थ्रू जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस रहते हैं उनकी वजह से जो होती हैं वो है डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। और पानी जब आ गया तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मॉस्किटो बॉर्न डिसऑर्डर्स रहते हैं लाइक डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया। और फिर इसी पानी की वजह से हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन पर भी प्रभाव पड़ता है, तो और स्विमिंग पूल्स में यूजुअली जैसे बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं तो उस वजह से स्किन प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती हैं, लाइक एथलीट्स फुट, फंगल इन्फेक्शंस, टीनिया क्रूरस जिसे हम बोल देते हैं, रिंग वर्म, एक्जीमा, और रेस्पिरेटरी में फिर यही एलर्जिक राइनाइटिस रहते हैं, साइनसाइटिस रहता है, एस्मा रह जाता है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, बेसिकली क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का अक्यूट फ्लेयर अप हो जाता है।
2: जी, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिन रोगों की बात की, तो क्या लक्षण रहते हैं कि एक इंसान को मॉनसून के इस मौसम में वायरल बुखार हो गया है या डेंगू हो गया है?
3: सर, लक्षण सबसे पहले हम सब जो एक कॉमन सा अपने घरों में नोट करते हैं, सबसे पहला लक्षण तो यही होता है बुखार होना। और जो स्पेसिफिकली डेंगू के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो दैट्स नोन एज ब्रेक बोन फीवर, हमारी हड्डियों में से आवाजें आने लग जाती हैं, चूर चूर होने लग जाते हैं, और किसी केसेस में फीवर हमारा बाद में आता है बट हमारी हड्डियां पहले टूटने लग जाती हैं, ऐसा फील होता है हमारी बॉडी में जान ही नहीं बची हुई। और उसका मेन रीजन रहता है हमारा प्लेटलेट्स लो रहना, प्लेटलेट काउंट आपकी डाउन जानी शुरू हो जाती है, वो हमें ब्लड टेस्ट में पता लगती है, बट जो लक्षण आते हैं वो यही है, डिजीनेस, टायर्डनेस,

0: बंदा इतना वीक हो जाता है कि वो अपने यूजुअल हाउस होल्ड चोर्स भी नहीं कर पाता। ये सबसे मेन रहते हैं, फीवर, खांसी, जुकाम, नज़ला, वायरल के सेम ही लक्षण रहते हैं
1: जी। लेकिन लोग अक्सर वायरल और डेंगू बुखार में भ्रमित हो जाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, आप थोड़ा हमारे सुनने वालों को समझाइए।
0: सिर्फ वायरल इन्फेक्शन यूजुअली हमारा जो ट्रांसफर होता है वो एक दूसरे से हो जाता है कंटेमिनेशन की वजह से, और जो डेंगू रहता है उसका कंटेमिनेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं रहती, वो मॉस्किटो बॉर्न डिसऑर्डर रहता है, एडीज मॉस्किटो से। तो उसकी बीमारी जो होती है वो मॉस्किटो से होती है जहाँ पे मेजर ब्रीडिंग प्लेसेस होती है नियर बाय। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस तो ये रह गया। दूसरा रह गया, नॉर्मल वायरल में आपको यूजुअली उतना लेवल का बोन ब्रेकिंग फील नहीं होती, जैसे हमारी हड्डियां टूट रही हैं ऐसा फील नहीं होएगा आपका जो नॉर्मल वायरल है। जो एक्सट्रीमली वायरल है आजकल उसके भी काफी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाना पड़ता है, और वो हमारा ब्लड टेस्ट में नहीं आता वायरल का इन्फेक्शन, उसमें आपका ESR CRP 1% बढ़ सकता है, बट जो डेंगू के केसेस में है उसमें आपको NS1 आपका एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है, तो आपका ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ही आप उसे बता सकते हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि प्लेटलेट्स की आपने बात की, तो कई बार जब हम वैसे भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो प्लेटलेट्स कम निकलते हैं, तो क्या वो डेंगू के कारण ही होता है या कोई और कारण भी हो सकता है?
0: नहीं सर, डेंगू के कारण ही नहीं होता, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक कि हम डेंगू में हो जाएगा। चिकनगुनिया में भी आपके प्लेटलेट्स डाउन रह सकते हैं, नॉर्मल वायरल में आपके यूजुअली नहीं होते, बट अगर पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सप्रेस्ड हो रही है, बहुत ज्यादा वीक रह रहा है, तो उस केसेस में उसके प्लेटलेट्स उसके भी डाउन हो जाते हैं। एंड होम्योपैथी के अंदर उसका आपका बहुत अच्छा क्योर रहता है, आप सुबह मेडिसिन लेते हो, आप अगर शाम को भी टेस्ट कराते हो, नेक्स्ट डे भी कराते हो, अगर आपकी मेडिसिन की सिम्टम सिमिलैरिटी अच्छी है तो आपको नेक्स्ट डे भी पेशेंट की इम्प्रूवमेंट दिख जाती है उसमें।
1: जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि सांस की बीमारियां भी इस मौसम में दोबारा होने के चांस रहते हैं जिन लोगों को अस्थमा है या कोई और सांस की बीमारी है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए एक पेशेंट को ताकि वो इस मौसम का भरपूर आनंद ले, सेहतमंद रहे?
0: जैसे कि आप बोल रहे हैं, मॉनसून का ही वेदर ऐसा रहता है क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी हाई रहती है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस वजह से ही हमारी जो पुरानी बीमारियां हैं उनका अक्यूट फ्लेयर अप होने का चांस होता है, जैसे कि आपका एस्थमा रह गया, इवन जॉइंट पेन भी। हम पुराने टाइम से यही बोलते हैं ना, बारिशों का मौसम आएगा या बारिश आने वाली है तो आपकी पेन बढ़ जाएगी या इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, किसी भी प्रकार का हीलिंग स्लो हो जाते हैं क्योंकि कीटाणु बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं उस मौसम में, उनका ब्रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है आप ये कह लो। तो जो पेशेंट अगर हम बोलें कि उसको यूजुअली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि उस टाइम पर जो खाना जो ऐसे बाहर का खा लेते हैं ना, थोड़ा सा वो अवॉइड करें, उनको घर पे अपना प्रॉपर धो के खाना, क्योंकि उस टाइम पे टाइफाइड भी थोड़ा सा ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट को अपना खाना भी घर पे प्रॉपर खाना चाहिए, पानी भी आरओ वाला भी है अगर तो यहाँ गंदा आ रहा है, तो आपको बॉइल्ड वाटर यूज करना चाहिए ताकि आप वेदर भी अच्छे से इंजॉय कर सको। और मेन रहता है कि उसको अपने कॉटन क्लोथ्स डालने चाहिए, कपड़े प्रॉपर वॉश करने चाहिए उस टाइम पर, अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा दही वगैरह थोड़ी सी चीजें आपको टाइम देखकर खानी चाहिए कि धूप वाले टाइम में खा ली, शाम के टाइम पे ना खाई ताकि आपका ज्यादा प्रॉब्लम एकदम से ना आए, और थोड़ी सी आपको वार्म ड्रिंक्स लेनी चाहिए।
1: जी, इस मौसम में आपने जिस तरह से बताया कि कीटाणु पनपने लगते हैं और इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है, तो इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए?
0: एक तो अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें हमारा फर्स्ट ऑफ चॉइस का जो विटामिन रहता है दैट्स विटामिन सी। विटामिन सी की आजकल टैबलेट्स भी रहती हैं, बट अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। यूजुअली हमारे पेशेंट्स की बोलते हैं, या हम सब एक ह्यूमन नेचर है कि हम खाने के साथ चाय पीते हैं, तो आपका पहले तो वहीं जो भी न्यूट्रिएंट्स आने हैं वहीं पे ख़राब हो गए, तो आप अगर रोटी के साथ भी उसके ऊपर नींबू निचोड़ के खा रहे हो या दाल के अंदर नींबू निचोड़ के खा रहे हो, तो वहीं पे आपका आयरन अच्छा हो गया और विटामिन सी भी अंदर चला गया। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो यूजुअली लेमन का यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू जॉइंट पेन, तो उन्हें हम आंवला सजेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे आप इस फॉर्म में ले सकते हो, या विटामिन सी के जैसे जूसेस ले लिए, उससे आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी राइज अप हो जाती है। दूसरा ये रहता है कि अपनी इम्यूनिटी के लिए डाइट में आप अच्छा खाना रेगुलर खाओ, बैलेंस्ड मील लो, उसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं रहता, और बाकी अपने रेजिमेन में आप एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करो, दैट्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ हम कह सकते हैं, कि जितना अगर आपको मेडिसिन हेल्प करती है उसे

0: वेल आपको आपकी एक्सरसाइज वहाँ पे हेल्प करती है
1: जी। डॉक्टर साहब, जो रोग आपने बताए कि मॉनसून के मौसम में सबसे ज्यादा यही रोग होने का खतरा रहता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेट की बीमारियों की, तो किस तरह की या कौन कौन सी पेट की बीमारियां होने का खतरा रहता है इस मौसम में?
0: सर, जैसे कि आप पूछ रही हैं पेट की बीमारियां, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एड ऑन करेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हम बोल देते हैं किसी भी टाइम पे हमने कहीं भी खाना खाया तो गंदा खाना खाया या बाहर से खाना खा लिया या हमने हाथ धोकर खाना नहीं बनाया, जिसने भी आपको बनाया वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं थी, तो दैट्स वन ऑफ द कॉज फॉर अपना फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग के आगे अगर हम लेवल्स पे जाएं तो फूड पॉइजनिंग में ही हम जब उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर डिफरेंशियल डायग्नोसिस से हम बीमारी तक पहुँचते हैं, तो कुछ बन जाती है टाइफाइड, कहीं पर कॉलरा आ गया, वहीं हम बोल देते हैं जैसे टेप वर्म का इन्फेक्शन आ गया। ये सारी बीमारियाँ किसी ना किसी टाइप से आ जाती हैं कि पेट की बीमारियाँ होगी। और अगर सिंपल टू सिंपल हम बोले जहाँ पर आपका कोई बड़ी बीमारी नहीं आई तो हम डायरिया डाइसेंट्री बोल देते हैं, तो इसमें लूज मोशन ज़्यादा रहते हैं पेशेंट को, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, इनडाइजेस्टन की कंप्लेंट आने शुरू हो जाती है पेशेंट में।
1: जी, तो टाइफाइड की आपने बात की, टाइफाइड से बचने के लिए किस तरह का एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और होम्योपैथी में टाइफाइड का किस तरह से आप लोग इलाज करते हैं?
0: सर, टाइफाइड एज यूजुअल फूड बॉर्न डिसऑर्डर या वाटर बॉर्न डिसऑर्डर में आ जाता है। अगर आपने गंदे हाथ से, जो मैरी कुक की हम स्टोरी पढ़ते हैं अपने टाइम पे कि उसकी वजह से सबको टाइफाइड हो गया था, एक को हुआ फिर दूसरे को हुआ, ऐसी अब भी हम यूजुअली हम बोलते हैं ढाबे से अगर खा लिया या होटल से खा लिया तो किसी को टाइफाइड हो गया। उसका मेजर रीजन यही रहता है कि वहाँ पे क्लीनलीनेस की कमी थी। अगर हम होम्योपैथी की बात करें यहाँ पर, तो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअलाइज्ड है, तो उसमें हम ऐसे बीमारी तो आपकी ठीक हो ही जाती है, बट हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि पेशेंट को एज एन इंडिविजुअल देखें। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हम ये स्टडी करते हैं, जैसे हवा तो हर पर्सन ने सेम ली, सेम ही फूड खाया, पर उसमें से 10 में से सिर्फ 2 ही बंदे बीमार क्यों हैं? क्योंकि उस 2 बंदों की एक इंडिविजुअलाइज्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, जिसकी थोड़ी इम्यूनिटी उस डिजीज के लिए ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। तो वहां पर हम एज अ पर्सन के सिम्टम्स लेते हैं, उसकी थर्स्ट भी काउंट करेंगे, थर्स्ट अगर थर्स्टलेस है या थर्स्टी है, एपेटाइट उसका लो है, हाई है या सप्रेस्ड है वहाँ पे एपेटाइट, इमोशंस आपके सप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उन केसेस में हम लेंगे। अगर मैक्सिमम को नहीं हो रहा उसी 2 स्पेसिफिक को हो रहा है तो हो जाएगा, वहाँ पर होम्योपैथिक अप्रोच यहाँ पर काम करती है इंडिविजुअलाइज्ड। वहाँ
1: बिल्कुल आपने सही कहा, घर में जब खाना बनता है एक व्यक्ति खाता है, दूसरा घर का मेंबर भी वही खाता है, लेकिन एक को टाइफाइड हो जाता है दूसरे को टाइफाइड नहीं होता है, तो यही कारण रहते हैं उनके।
0: जी सर, होम्योपैथी के अकॉर्डिंगली हर पर्सन की एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी ही वजह से उसको वो स्पेसिफिक डिजीज के लिए ज्यादा कैच करता है वो, उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम बोलते थे गाउट है, आर्थराइटिस जिसे हम बोल देते हैं, कुछ स्पेसिफिक पीपल होते हैं जो सिर्फ गाउट की तरफ उनको ज्यादा होता है कि उनको कैच जल्दी कर जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। कुछ होते हैं जिनको चिली रहते हैं तो उनको कोल्ड जल्दी हो जाता है, कईयों को स्किन की प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, टाइफाइड का इलाज आप किस तरह से करते हैं और कितने चांसेस रहते हैं कि जल्दी ठीक होने के होम्योपैथी द्वारा?
0: सर, अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो 100% चांसेस होते हैं हम रिकवरी के पेशेंट को, एंड टाइफाइड के केसेस इन माई ओन प्रैक्टिस मैंने अपनी फैमिली में भी काफी पेशेंट्स ठीक करे हैं, हमारे ओपीडीज में भी जितने पेशेंट आते हैं काफी पेशेंट्स ठीक होते हैं टाइफाइड के। और टाइफाइड का यूजुअली जो टेन्योर होता है 15-20 डेज तो उसका बैक्टीरिया बॉडी में रहता ही रहता है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट को आफ्टर सिम्टम्स रहते हैं ना, वीकनेस रहना, दोबारा रिलैप्स होना टाइफाइड का, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो हमारे पास मेडिसिंस तो काफी होती हैं टाइफाइड के लिए, बट हम उसे डिसाइड पेशेंट को देखकर करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: सर, मेरा सॉन्ग जो पसंदीदा है वो है तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, फ्रॉम द मूवी स्त्री।
1: जी, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संजीवनी, और आज इस कार्यक्रम में हम मॉनसून में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी में उनका इलाज विषय पर बात कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षदीप कौर, आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल सेक्टर 34 में ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि टाइफाइड का इलाज किस तरह से आप लोग होम्योपैथी में करते हैं, तो सबसे पहले तो बात आती है लक्षण क्या रहते हैं किसी को टाइफाइड हुआ है।
1: सर, टाइफाइड का जो फीवर होता है वो यूजुअली हमारे पेशेंट्स कई बार हमारे पास मेडिसिन लेकर ही आते हैं कि हमने ये मेडिसिन ले ली, हमने ये मेडिसिन ले ली, या हमने होम्योपैथिक ले लिया, एलोपैथिक ले ली, तो उसके बाद भी टाइफाइड का जो फीवर होता है वो जल्दी टूटता नहीं है। वन ऑफ द मेजर रीजन आपका टाइफाइड का, अगर हम सिम्टम बोले या बोले कि साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, उसका फीवर नहीं टूटता। वो टाइफाइड का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिम्टम बोल दो कि फीवर टूटने में ही 3 से 4 दिन कई बार पेशेंट को लग जाते हैं। सेकेंड अगर हम बोले तो उसमें डाइजेस्टन का इशू आना शुरू हो जाता है। टाइफाइड के बाद भी पेशेंट का लिवर वीक होता है, बट ड्यूरिंग टाइफाइड भी उसका लिवर पर इफेक्ट डल जाता है। हम बोलते हैं थोड़ा इजी सॉफ्ट डाइजेस्टिबल फूड खाया करें। तो हमारा सेकेंड सिम्टम यही रहता है कि पेशेंट का स्टमक एक खुश होना शुरू हो जाता है, या वो जो भी खाता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, डायरेक्टली ही रन्स टू द वॉशरूम। थर्ड अगर हम सिम्टम आपको बोले यही, क्योंकि फीवर हो गया, इम्यूनिटी लो होगी, तो उसे कफ कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, वो जल्दी नहीं टूटता। हेडेक रहता है, बॉडी वीकनेस, टायर्डनेस, डिजीनेस, ये सारी रहती हैं।
0: जी, तो इस मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रहती हैं बहुत से लोगों को, तो उसके बारे में बताइए स्किन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए खास तौर पर इस मॉनसून के मौसम में एक व्यक्ति को क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
1: अगर पेशेंट को स्किन प्रॉब्लम है तो उस केसेस में उसे अपना टॉवल, अपने कपड़े सब अलग करने चाहिए, और अगर नहीं है तो अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स पर जाते हैं तो उसे अपने ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू स्वेट, उसे अपने कपड़े चेंज तो जब करता है बट साथ में अपनी बॉडी को ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पर। ड्राइनेस के लिए चाहे वो पाउडर यूज़ कर ले, चाहे वो प्रॉपर टॉवल करे अपने आप को आफ्टर बेदिंग, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है। अपने आप को प्रॉपर मॉइस्चराइज करके रखे विद क्रीम्स हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, जो भी उसकी बॉडी को सूट करता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एंड अगर धूप में निकल रहा है या बारिश में निकल रहा है तो सनस्क्रीन यूज़ करके जाए। दूसरे, पिंपल्स होने का बहुत ज़्यादा इशू रहता है इस वेदर में, तो पिंपल्स के लिए उसे प्रॉपर फेस वॉश करना चाहिए, अपने फेस को ड्राई रखना चाहिए, एलोवेरा वगैरह से नॉर्मल चीज़ें लगानी चाहिए बॉडी।

0: के ऊपर ये रहता है स्किन के लिए, और अगर उसे इन्फेक्शन है तो डिजीज के अकॉर्डिंगली ही प्रिवेंटिव मेजर्स वो यूज करने चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इस मौसम में बहुत से लोगों को बहुत सी एलर्जीज होने का भी खतरा रहता है, उसके बारे में बताइए कौन कौन सी एलर्जीज इस मौसम में हो सकती हैं?
0: सर, एलर्जी अगर हम बोले, आज सुबह ही ओपीडी में हमारे पास एक केस आया था, तो एलर्जी उसको यही थी कि बारिश आने लगी है या बारिश का मौसम आ गया तो उसे कोल्ड दोबारा से होने शुरू हो गया था। एस्थमा का ही केस चल रहा था, बट अभी उसको दोबारा एकदम से अक्यूट इशू आना शुरू हो गया था कि उसे सांस लेते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। और एलर्जी उसे डस्ट से जो नॉर्मल होती थी वो इस सीजन में थोड़ी एग्रावेट हो जाती है कि डस्ट आ रही है या बारिश आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है तो वो छींके मारने शुरू कर देता है। हम यूजुअली बोलते हैं ना कि अगर सुबह सुबह आप उठते सारी 10 से 15 छींके मार कर ही उठ रहे हो, तो ये और वो भी मानसून के सीजन में, तो एलर्जिक राइनाइटिस की इशू रहता है, उसमें एलर्जीज होती हैं आपको और वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हैं इस मौसम में, तो ये मेजर इश्यूज यही रहते हैं हमारे इस सीजन में।
1: तो ऐसे पेशेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ये जो उनको प्रॉब्लम आती है वो ना आए?
0: सर, सावधानियों की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट को अपना ट्रिगर खुद आइडेंटिफाई कई बार करना पड़ता है। कई बार तो एलर्जी पैनल में उसका आ जाता है कि इन इन चीजों से उसे एलर्जी है और उसके IgE पैरामीटर भी बढ़ जाता है, बट जहाँ पर हम बोलते हैं कि कुछ नहीं पता चल पा रहा, वहाँ पर पेशेंट खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं उसे किस चीज से ट्रिगर हो रहा है। जैसे अलमारी खोलते हैं उस टाइम पर डस्ट आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर हम पेशेंट को पहले यही बोलते हैं कि आप इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहो। फिर धीरे धीरे जैसे हम उसे मेडिसिन देते हैं तो वो उसका, अगर पहले 100 थी एलर्जी तो उसके बाद धीरे धीरे 50 हो जाती है, 50 के बाद 30 पर आ जाती है, फिर 10 पर आ जाती है, ऐसे करके 0 हो जाती है। तो ये हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर ये रहता है। हम इसलिए ये नहीं बोलते कि एलर्जी उसको लाइफ लॉन्ग रहेगी, बट ये है कि जितनी थी उससे निग्लिजिबल फॉर्म पे चली जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, इस मौसम में खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मानसून के मौसम में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें?
0: सर, सबसे बड़ी बात है जिनके घर में अगर कूलर है या जिनके घर के बाहर थोड़ा सा भी कीचड़ है घर के बाहर या कच्चा मैदान है, तो वहां पर उन्हें सबसे पहले ये चेक करना है कि पानी खड़ा ना हो वहां पर, वाटर लॉगिंग का इशू ना रहे, ताकि एक तो मच्छर ना बनपे और दूसरा कीचड़ की वजह से वो गिरे ना। ज्यादा केयरफुल रहने का उस टाइम पर मेजर रहता है, क्योंकि मॉनसून इज समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल कि आपके लिए जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही वहां पर मेजर आपके लिए रिस्क हो जाता है, तो वो चीजों को ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है। क्योंकि ये तीनों ही चीजें जो है, मतलब हम तीनों वर्गों के लिए बोले, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिला के लिए, तो ये तो सबसे पहले उसे चेक करना पड़ेगा अपने घर के बाहर और घर के अंदर कहीं भी। और अगर बाल्टी भी अगर आप बाथरूम के अंदर भर के रखते हो, बर्तन की भी रखते हो, बाथरूम में भी रखते हो, तो आपने पानी हमेशा ढककर रखना है। और पीने वाला पानी भी अगर आपके वहाँ पर कोई भी समस्या आ रही है तो आप चाहे फिटकर ही डाल के रखो, चाहे उबाल कर उसे पियो, जैसे भी करो, आपको पानी डिसइंफेक्ट करना जरूरी है।
1: जी, सबसे जरूरी यही है कि पानी को उबाल कर ही पिया जाए ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने का खतरा ना रहे।
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, कई लोग अपने आप इंटरनेट देखकर होम्योपैथी की दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सर, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज हार्मफुल। हम बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस टू हेल्थ, मतलब इट कैन बी मोर ऑफ अ हैजर्ड फॉर द पेशेंट। क्योंकि कुछ पेशेंट्स आजकल आते ही हमें ये कहते हैं कि हमें ये वाली दवाई चाहिए या हम ये वाली तो पहले ही खा चुके हैं। अब एज अ डॉक्टर हमें पता है कि हमें सिंगल डोज देनी है, हमें पता है उसे डबल डोज देनी है या ट्रिपल देनी है या देनी ही नहीं वो वाली मेडिसिन, तो पेशेंट्स यूजुअली सेल्फ मेडिकेट करके आते हैं। चलिए, कुछ केसेस में हम बोलते हैं पेशेंट को नॉलेज है, नॉलेजेबल पेशेंट है, तो वो ठीक हो गया, बट मेजर केसेस में वो उल्टा इतनी ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन कर चुका होता है जितनी उसे नीड ही नहीं होती। हम एलोपैथिक वे में जैसे बोल देते हैं बॉडी में रेजिस्टेंस फॉर्म होगी एक मेडिसिन के लिए, एक एंटीबायोटिक के लिए, वैसे ही होम्योपैथिक भी है तो मेडिसिन ही सर। हम बोल देते हैं साइड इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट्स अ मेडिसिन। आप घर पर ही हम बोलते हैं एक रोटी से ज्यादा अगर कोई दूसरी रोटी भी खा लेता है वो भी उसकी बॉडी के लिए पॉइजन ही बनती है इन द लॉन्ग रन। चीनी भी आप ज्यादा खा लो तो भी। तो इन केसेस में हम पेशेंट को यही बोलते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप उसे पूछ कर मेडिसिन लो, उसे नॉलेज कर लीजिए, कंसल्ट करिए, दैट्स अ गुड वे टू हैव मेडिसिन।
1: डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर आपकी पसंद का एक और गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: सर, ये सॉन्ग सुना दीजिए, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है।
1: जी, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संजीवनी, और आज इस कार्यक्रम में हम मॉनसून में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी में उनका इलाज विषय पर बात कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हर्षदीप कौर, आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल सेक्टर 34 में ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्किन एलर्जीज की बात की, तो इस मौसम में कौन कौन सी स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं या होने का खतरा रहता है?
1: सर, स्किन की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन सबसे आगे आता है, फिर रिंगवर्म आ गया जैसे फंगल इन्फेक्शन का एक पार्ट रह गया, एथलीट्स फुट आ गया जैसे हम पानी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से पैर एकदम से आपको लगता है होता है वो फंगल इन्फेक्शन ही है, बस उसे हम कहते हैं एथलीट्स फुट है। एक्जीमा बाहर आना शुरू हो जाता है जिनको स्किन एलर्जीज होती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इवन डैंड्रफ भी होने लग जाता है कई पेशेंट्स को, बाल झड़ने लग जाते हैं, तो ये सारी स्किन के इश्यूज इस वेदर में बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करते हैं।
0: जी, और इस मौसम में जो शुगर पेशेंट है या हाई बीपी है, जिनको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनको अपना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि वो तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें?
1: सर, बीपी और शुगर के पेशेंट्स को अपनी रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए जो भी उनकी चल रही होती है, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, उन्हें अपनी मेडिसिन जरूर कंटिन्यू करनी चाहिए, वो मिस नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ क्योंकि स्किन इश्यूज होने का डर रहता है तो उन्हें अपनी डाइट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके थोड़ी बॉडी पहले से ही वीक होती है शुगर और बीपी के पेशेंट्स की, तो इस चक्कर में उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं, जल्दी कोल्ड भी जल्दी कैच कर सकते हैं। तो मेजर उनका कोई इशू नहीं रहता इस वेदर में, बस उनका एक ही इशू रहता है कि उनकी थोड़ी इम्यूनिटी वीक होने के कारण उनको डिजीज कैच करने थोड़े इजी हो जाते हैं उस टाइम पे।
0: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उन सबको मॉनसून में अपनी सेहत का किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह का उनका खान पान रहे, किस तरह से उनकी दिनचर्या रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें हमारे कीड़े लगने का डर थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनको भी आप सब्जियां भी जो हरी सब्जियां बनाते हैं वो भी प्रॉपर बॉइल करके यूज करके उन्हें गैस के ऊपर प्रॉपर आप उसको पकाइए फिर खाइए। और दूसरा, आप ट्राई करें कि इस सीजन में अगर आपको सब्जी साफ नहीं मिल रही तो पल्सी

0: हर्ब्स यूज करिए, दालें ज्यादा उपयोग करिए इस मौसम में। इन चीजों से भी आपका काफी इम्प्रूवमेंट रहती है बॉडी में, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी राइज रहती है। सूप यूज करिए, फ्रूट्स यूज करिए, बट जो भी यूज करिए आप फ्रेश यूज करिए। विटामिन सी का प्रयोग करिए अपनी डाइट के अंदर, और आप अगर ध्यान रखेंगे तो सारा कुछ आप अपनी डाइट में ध्यान रखिए। कपड़े अच्छे डालिए, साफ डालिए, स्वच्छ डालिए।
1: जी डॉक्टर हर्षदीप कौर, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, संजीवनी कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।

0: कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। अब आज का संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आपने संजीवनी कार्यक्रम सुना।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क

0: में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रोग्राम यादों की महफिल।
2: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों

0: जन्मभूमि है रोमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर की बोल, एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया। एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। ये फिल्म है खलनायक। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: फिल्म वास्तव का गीत, सुनिए गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोइत्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।
1: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।
1: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। यही क्रम रहता है 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 2:15 पर, 5:00, 6:00, 8:45 पर समाचार संध्या, 11:00। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे सुनिए 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। शाम 6:30 पर पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए हम पेश करेंगे। 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 1:15 पर, 5:05 पर। विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में 1:30 पर सुरीला सफर, 2:00 प्रोग्राम त्रिवेणी, 2:30 सदाबहार नगमे, 3:00 प्रोग्राम सखी सहेली। टॉक शो पिटारा में 4:00 आज के मेहमान प्रोग्राम में गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं, भाग 2 इस बातचीत का। 7:00 फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने। 8:00 प्रोग्राम हवा महल में झलकी आप सुनेंगे, चलो शुरू हो जाओ। 9:30 आज के फनकार प्रोग्राम अभिनेता जॉनी वॉकर पर।

0: केंद्रित है। 10 बजे छाया गीत, 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। ये थी जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों को गुरु पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी होते हैं, जो जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। उनकी उपस्थिति से चरित्र, मूल्य और व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जीवन में सत्य और कर्तव्य की समझ जागृत होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परिचय एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 3,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नौकरी में लिए जाने के मौके पर उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त समूह डी कर्मचारियों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा,
2: साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है।
1: फरीदाबाद पुलिस ने सावन माह में कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को यात्रा के दौरान पहचान पत्र साथ रखने, सड़क के बीच कांवड़ न रखने तथा वाहनों में तेज आवाज वाले डीजे का प्रयोग न करने और किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 का प्रयोग करने की सलाह दी है। भिवानी में पशुओं को मुंह खुर की बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। भिवानी के पशु चिकित्सक विजय संसनवाल ने बताया कि मौसम में परिवर्तन के दौरान पशुओं में मुंह खुर का रोग प्रमुख है, जो एक छूत की बीमारी है।
3: ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये भी बहुत घातक और फैटल है पशु के लिए। आजकल हम इसके लिए LST के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। पूरे भिवानी जिले में वैक्सीनेशन का कार्य चला हुआ है। जितनी भी गायें हैं सभी के ये टीकाकरण किया जाएगा। इसके LST वैक्सीन के लिए अब 1 महीने का समय रखा गया है।
1: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता दीपक गर्ग को 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि कार्यकारी उसके लंबित बिलों का भुगतान जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद की टीम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुरूप मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जिला नूह में 3 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नूह पुलिस ने भारी वाहनों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान जिले की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पुलिस प्रवक्ता ने वैकल्पिक मार्गों को लेकर बताया कि अलवर से सोहना और गुरुग्राम जाने वाले बाहरी वाहन फिरोजपुर झिरका

अम्बेडकर चौक से मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए केएमपी रेवासन के रास्ते अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसी प्रकार सोहना से गुरुग्राम तथा तावड़ू से अलवर जाने वाले भारी वाहनों को भी केएमपी रेवासन से मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अम्बेडकर चौक फिरोजपुर झिरका के रास्ते अलवर जाने के निर्देश दिए गए हैं। पलवल होडल और अलीगढ़ से अलवर जाने वाले भारी वाहन भी केएमपी और मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
2: फिल्म संगीत में एक बार फिर से हम आपके साथ हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ही हमें सन्मार्ग दिखलाता है। ज्ञान का वो सागर है गुरु, जो हमारे जीवन को रोशन करता है।

अभी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। ये फिल्म थी सीमा। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं को हम याद कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें जीवन में चलना सिखाते हैं, सन्मार्ग दिखलाते हैं, हमारी उलझनों को दूर करते हैं और जीवन में मर्यादाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, इनके बारे में बतलाते हैं। अगर जीवन भर हम इन बातों का अनुसरण करते रहें तो हमारा जीवन सफल है, सार्थक है।

0: अभी आपने लता मंगेशकर, राजन और साजन मिश्रा की आवाजों में ये गीत सुना। ये फिल्म थी सुरसंगम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में ये गीत आपने सुना और यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: अगला प्रोग्राम है सुरीला सफर, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में
2: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
3: HPTDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
2: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
3: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
2: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
3: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
2: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं, एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं। किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए, जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहां जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

यह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं, पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, फिल्मों में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। जी, तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था, हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है, आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और SH बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी, इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया, पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया, उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है, हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है, तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, SH बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज़ है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10, जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा, संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने गाया था, ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशा ताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे, इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला, ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार, ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया, सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 5 राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है, वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा, उस गीत को खास सुनने के लिए

0: तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी। ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर, फिल्म आया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो, जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमान ने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म

हटा दिया गया था, मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है। ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है। विराजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं

0: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
3: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का

0: कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।
1: तुम भी

तो आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यही समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद N.K. प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव।

0: जवाब दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
4: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए।

0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
1: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
2: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
3: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।

आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु ना होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता है।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है
0: लेकिन घूमने भी जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहाँ जंगल सफारी की सैर

0: पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता
1: जी
0: है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाएं वहां
1: जी
0: पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका
1: ध्यान
0: असंतुलन होता
1: विचलित
0: है, ध्यान
1: जी
0: विचलित होता है और
1: हाँ
0: फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या
1: जी
0: कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल
1: हमारा
0: रखते हैं,
1: ध्यान
0: और
1: रखते
0: हाँ,
1: हैं
0: और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की।
1: जी।
0: और
1: और आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
0: बिल्कुल
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आपके क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है, पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनाली एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ? साड़ी
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: जी, और पहनती
0: और
1: भी हैं बड़े शौक
0: मौकों
1: से
0: पर शौक से पहनती हैं।
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे, क्योंकि साड़ियों
1: कसाऊ
0: का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है,
1: जी
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे। और शब्द बहुत अहम होते हैं, कि
1: बहुत अहम होते हैं
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते
1: नहीं
0: हैं,
1: आते
0: तो इसलिए जब भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है, तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या हम उम्र हों, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं,
1: और व्यंजन
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है
1: और व्रत
0: प्रोग्राम।
1: के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन में हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
1: हाँ, मखाने की
0: और
1: खीर बनती है
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं,
1: जी।
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: आप गीत सुनते हैं,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए
0: जी।
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ, बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं। जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे
0: जी। और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और एक स्वस्थ बाघ आबादी समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है,
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक

0: वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
1: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ने 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है
1: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है,
0: तो सुने वही गाना
1: जी।

0: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
1: कई साल पहले की ये बात है,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: हाँ तो भाई,
1: अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी हाँ। वाइफ
1: अच्छा
0: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते हैं बाघिन
0: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में घूमने गए थे और जो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
1: क्या बात है भाई तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी है
1: बिल्कुल और
0: डर में उपस्थित
1: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसाऊ का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना
0: जी।
1: यही सुनहरी जरी साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
0: बहुत महंगी हो जाएगी,
1: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी तो इसलिए कि वो नहीं लगे तो अच्छा है
0: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपनी विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
1: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
0: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
1: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
1: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताज़ा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज़्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और वहाँ पर
0: पहन के पोस्ट करना
1: फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी,
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है।
0: अब जैसे सखी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है।
1: अब जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुँचा रहे हैं कि जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना
0: जी।
1: तो अब क्या करें हम,
0: ब्रेक लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है, और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, 0% डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी ने वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं।
4: अरे मन बहुत है, भले ही हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
0: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है, इससे बचना चाहिए।
4: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है, और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
0: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
4: हालांकि

0: क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है। इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपने आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
1: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था। कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं। महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
0: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है, तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
1: और बुजुर्ग कहा करते थे, चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारें। और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
0: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
1: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दें एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ, कहेंगे ममता जी। श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी, हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख हो पाए।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके
1: जी।
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है, तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनके टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत के शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है
1: जी।
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं
1: जी।
0: व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने, और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीज़ों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं, या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भूनकर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताज़े दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताज़ा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे हैं।
0: अरे वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले, और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए, और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक

0: तल ले और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो, 5 मिनट के रख दे। फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेंटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनारदानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
1: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए
0: जी।
1: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
0: जी।
1: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है? इससे एकाग्रता कम होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों में मोबाइल का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस संबंध में आप कोई राय लेना चाहते हैं? तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

0: सोनाली, रात के कल ही एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत ख़राब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर कई वो बार बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलते हैं?
1: जी, बोलना ही पड़ता है आजकल के छोटे भी
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी,
0: अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता। इसे अपने

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था और मैं 2020 की बात करूँ, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, हार्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आठ के आठ शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से दो घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज़ को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूँगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीज़न है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी। और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया जा। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ही मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ। एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, वही मैं भी सोच रहा था
0: तब तक ये सोच,
1: उनको ये गाना है
0: ये लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग

0: क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार

0: गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रिमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: Exactly.
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
1: ये मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मूड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस कर रहे
0: हैं। क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
1: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
2: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने वो कुछ सोच के ही बने होंगे। अब आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं जो 10 12 15 साल के जो जनरेशन आजकल जो चल रही है वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
2: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या भी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
2: बहुत अच्छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना?
1: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
1: Exactly.
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
1: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
1: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना ज़बरदस्त है,
0: बिल्कुल
1: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
0: जी
1: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जाने कहाँ गए वो दिन।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।

0: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। Exactly. अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
2: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर मुकेश जी नहीं होते तो।
1: जी
2: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज़्यादा है।
1: आम जनता की बहुत चहेते गायक,
2: बहुत चहेते गायक थे। यस यस
1: गोविंद, आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और हाँ। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सब ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो गुजरात। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
2: जी जी जी जी,
0: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए,
0: गुजराती गाने भी।
2: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
2: और शायद पर्पसली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
2: 46 में।
1: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
2: 23 साल
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
1: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे, नजर

0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है
1: ओ,
0: ना, वहां
1: बिल्कुल
0: शोज भी उन्होंने काफी सारे
1: काफी
0: किए।
1: सारे किए।
0: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
1: एग्जैक्टली
0: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
1: एग्जैक्टली
2: बिल्कुल
1: यस।
2: बिल्कुल
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
2: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
0: अरे बाबा, क्या बात है,
2: हूँ।
0: जरूर।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया,
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा, आईना हूं मैं तेरा,

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इस इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावन।

वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो।

0: आना जाना ही मुश्किल हो जाए लेकिन फिर भी बर्स हो है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा। तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकम्फर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: हजार लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: हाँ, मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद देखने के बाद के, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लेंगे फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: फैंस किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज के इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर, ख़ासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने आपने ढाई तीन घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूज़िक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे ममूस एरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम ख़त्म हो जाती है। वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला कर बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाएँ, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो

0: फुल्ली एंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए, लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते हैं।
1: सबसे पहले तो अपना
0: मोबाइल म्यूट रखना
2: वो
0: चाहिए,
2: तो जरूरी है,
0: डेफिनेटली
2: वो तो जरूरी।
0: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको वो पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
0: एग्जैक्टली,
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
0: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारा पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ,

0: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो।
2: कब से सोच रहा हूँ मैं।
0: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना। हाँ।

0: लो भाई गोविंद।
1: हाँ एच है। हाँ
2: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिसके बाद

0: है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: क्या बात है, कितना मजा आ रहा है कि ये नहले पे दहला चल रहा है।
1: अच्छा, तो जाए पे ए या हो?
0: हाँ, ये तो फैसला करना पड़ेगा कि ये क्या है।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल के।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: 2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने हुए हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
2: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
1: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में हीरो फिल्म का ये गाना, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आइए अब सुनते हैं रोना लैला और भूपिंदर सिंह की आवाजों में घरौंदा फिल्म का ये गाना।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Family trip plan करने से पहले करें destination research. कम budget में कर सकेंगे enjoy. Family के साथ outing पर जाना थोड़ा खर्चीला option हो सकता है, लेकिन यदि vacation की planning सोच समझकर budget friendly trip plan करने

का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट पर अधिक पैसा न खर्च किया जाए। अगर आप सेंटर ऑफ द कैपिटल सिटी दिल्ली के पास नैनीताल, भीमसेन या मसूरी के चुनाव कर सकते हैं या कम समय में ट्रिप पर जा सकते हैं। फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का मतलब है तनाव और चिंता को दूर कर लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना। साल में एक बार हर कोई फैमिली ट्रिप प्लान करता है। फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना थोड़ा खर्चीला ऑप्शन हो सकता है। समटाइम्स इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट विद सो मेनी चार्जेस गोइंग अप। इसके लिए एक बजट बनाना जरूरी है जिसके हिसाब से अन्य चीजें फिक्स की जानी चाहिए। साथ ही यदि डेस्टिनेशन की पूरी जानकारी है तो ट्रिप और भी आसान हो जाता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ट्रिप्स के बारे में जिनकी सहायता से फैमिली वेकेशन को बजट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। वेकेशन पर जाने से पहले डेस्टिनेशन का चुनाव बेहद जरूरी है। ऐसे डेस्टिनेशन का चुनाव करें जो आपको बजट के हिसाब से हो। अपने सिटी के आसपास भी कुछ लोकेशंस आप देख सकते हैं विच हैव सम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट पर अधिक पैसा न खर्च किया जाए। शहर के आसपास के डेस्टिनेशन का चुनाव करें। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय खुद का ट्रांसपोर्ट यूज किया जा सकता है। इसे प्लेन या ट्रेन का महंगा टिकट लेने से बच जाएंगे और कम पैसे में डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। बजट फ्रेंडली वेकेशन के लिए किसी ट्रैवल साइट की मदद ली जा सकती है। ये साइट्स कम बजट में भी पूरी ट्रिप प्लान कर देते हैं। ये साइट्स टिकट से लेकर होटल्स, ट्रांसपोर्ट, साइट विजिट, लंच व डिनर तक का अरेंजमेंट करते हैं। यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है जब परिवार साथ होता है। सबके साथ घूमने फिरने का जो आनंद है उसके अलावा सबसे बड़ी निश्चिंतता होती है किसी भी तरह की औपचारिकता का न होना। परिवार साथ है तो खर्च को लेकर भी राहत आ जाती है। मन में ये भाव रहता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ भी तो मिलकर संभाल लेंगे। फिर यही यादें जीवन भर के लिए मन में बस जाती है। साथ बिताए पल पूरे परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा पाने का अवसर बन जाता है। सब इससे कुछ ना कुछ नया सीख भी जाते हैं। एक दूसरे को समझने का मौका भी पाते हैं। जब नई पीढ़ी नौकर, शादी या पढ़ाई को लेकर शहर या देश से बाहर जाते हैं तो पुराने एल्बम से यही यादें निकालकर माता पिता के साथ बिताए दिनों की तसल्ली देती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो परिवार के साथ यात्रा करने से अनुभव होता है। जानिए तफसील से आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। बॉन्ड बनने का मौका। तेज भागते दौड़ते जीवन में हर एक व्यक्ति समय की कमी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होता है। बड़ों को दफ्तर या घर से फुर्सत नहीं होती है तो बच्चे और युवाओं को पढ़ाई और वर्चुअल दुनिया से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में वेकेशन सबको एक साथ लाने का सबसे बेहतर विकल्प बताती है। घर में रहते हुए भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच संवाद की कमी और दूरियों को एक छुट्टी मिटा डालती है। रिश्ते के बीच बॉन्ड बनाने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता है। फिर चाहे छुट्टी बिताने पति पत्नी जाए, पेरेंट्स और बच्चे या फिर भाई बहन, भावनात्मक रूप से जुड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका साबित हो सकता है। चाहे आप दो दिन की छुट्टी से वेकेशन पर ही क्यों ना जाए। साथ गुजरे गए पल आपको पूरे जीवन के लिए खुशियां सहजने का मौका देते हैं। जब भी मन उदास हो या कोई उलझन घेरे, इन छुट्टियों में बिताए पलों के फोटो या वीडियो या मन में बैठी यादों को रिवाइंड कर लेने से आप प्रफुल्लित महसूस करने लगेंगे। ये वो पल होते हैं जब आप अपने बेस्ट स्वरूप में सबसे निश्चित और खुश होते हैं। इसीलिए छुट्टियों में बिताए समय हमेशा आपको खुशियां देने और तरोताजा करने का काम करते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसी छुट्टियां रिश्तों में आने वाली कड़वाहट को दूर करने का भी जरिया बन जाती है। हर रोज उसी रूटीन से जूझते हुए शायद आप ये भूल जाए कि आपकी पत्नी, बहन, बेटी या घर की अन्य महिलाएं संगीत या नृत्य में भी रुचि रखती है, या कि आपके पापा या भाई बहुत अच्छा विसलिंग करते हैं, या कि आपके घर का कोई सदस्य या फिर किसी की फोटोग्राफी स्किल्स बहुत ही शानदार है। छुट्टियों में साथ समय बिताने से ऐसी कई बातें सामने आती है और आपको ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति खास है, हर व्यक्ति में कोई हुनर है। इस बात का एहसास ही अपने आप में खास है क्योंकि ये आपको

उस व्यक्ति के बारे में करीब से सोचने का, उसके प्रति सम्मान महसूस करने का अवसर देता है और रिश्तों में गर्माहट भरने का काम भी करती है। नए को जानना भी और नए को जीना भी। केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार तो स्कूल किताबों से आगे की बात भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के संस्मरणों में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उनके पिता के साथ की गई यात्राएं उन्हें प्रकृति और परिवेश के बारे में अद्भुत जानकारियां पाने में सहायता करती थी। हर नए सफर ने नए स्थान तक जाने में हम भिन्न संस्कृतियों, खान पान, भाषाओं, बोलियों, लोगों आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और सीखते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो यात्रा ही आपको दे सकती है और जीवन में ये बहुत काम भी आती है। सफर के दौरान हो या किसी जगह पहुंचने के बाद अचानक आने वाली मुश्किल का एक ही हल होता है, तुरंत उसका समाधान ढूंढना। यात्राएं आपको ये भी सिखाती है, नए मौसम में समंजस बैठना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज के जरिए अपनी सीमाओं को चुनौती देना, नए वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना आदि व स्थितियों को जो आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। ये केवल यात्रा के लिए नहीं है, वेकेशन के बाद भी जीवन में आने वाली कई स्थितियों में ये रवैया मदद कर सकता है। खासकर परिवार के बच्चे और युवाओं के लिए एक दूसरे की ताकत बनने का अवसर अक्सर साथ रहते हुए भी परिवार के सदस्य इस साथ रहने की ताकत को नहीं समझ पाते। ये बात एक छोटी सी वेकेशन समझा सकती है। उदाहरण के लिए कहीं गाड़ी में कोई खराबी आ जाना, कहीं होटल में जगह न मिल पाना आदि जैसे चुनौतियां सामने आने पर परिवार किस तरह एक साथ इनका सामना करता है और इनके पार निकलता है। ये एक प्रकार का मोटिवेशन होता है जो यात्रा के दौरान मिलता है। बच्चों से लेकर बड़ों को ये बात समझ में आती है कि हमें साथ पाना या मदद के लिए अपने परिवार से बढ़कर सहयोग और कोई नहीं मिल सकता है। यही हमारी असली ताकत है। यात्राओं के दौरान सभी बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। इसमें दुनिया की व्यवहारिक सीख पाने के अलावा खुद को कई स्तरों पर परखने का मौका भी मिलता है। बच्चों को खेलने, दौड़ने, भागने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। बंद इमारतों से अलग खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। बच्चों को यदि आप पैसे का प्रबंध सिखाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। इससे बच्चों को आने जाने के रूट, नए शहरों की जानकारी, मैप का उपयोग करना आदि जैसे चीजें भी सीखने को मिलती है। यानी कुल मिलकर यात्रा परिवार के लिए एक ऐसा अनुभव बनाती है जो उम्र भर सबके काम आती है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली वेकेशनिंग। विद दिस इंफॉर्मेशन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: लेश
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
0: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
0: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी,
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
0: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
0: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
0: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओ, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
0: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
0: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
0: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
0: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
0: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।

कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ,
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन हाँ, मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद? हाँ, उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा,
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम।
1: हाँ जॉन।
0: तो इलेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ, और सुनो।
1: हाँ।
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ,
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है। और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
1: हाँ ठीक है।
2: अरे वाह जॉन।
0: हाँ
2: देखो सामने।
0: अरे हाँ,
2: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें

0: मैं भी जरूर मिलेगी।
1: हाँ जॉन, हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
1: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
0: तुम्हें विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ,
2: आइए।
3: यहाँ?
2: हाँ, आइए आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा इधर।
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
4: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
3: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक

0: के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित

0: सदानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz से ये आकाशवाणी है। तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: टाटा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: ਆਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਪਨਾ ਅਵਸਥੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।

0: FM 107 इशारे 2 MHz से आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले शाम दे 6:10 होने वाले ने कुछ ही पहला च प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। पहला हिंदी 6:10 साडे केंद्र तो फिर 6:20 पंजाबी विच आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, उन्हें लोक सेवा की भावना से काम करने का आग्रह किया। कुरुक्षेत्र में गुरु दक्ष प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया। और हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन हरियाणा राज्य गीत के सामूहिक गान को अनिवार्य किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया।
2: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहें,
3: हां।
2: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष

0: ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परिचय एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में नव चयनित 6 कर्मचारियों को प्रतीक स्वरूप नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने मेहनत और प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले सभी 3,586 युवाओं को बधाई देते हुए कहा,
2: मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह आपकी मेहनत का ये सम्मान है। इसके पीछे आपके माता पिता की तपस्या है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज आपके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं चाहता हूं ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे, बल्कि ये जनसेवा का संकल्प लेने का उत्सव बने।
1: मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त कर्मचारियों से कार्यालयों में लोक सेवा की भावना से काम करने को कहा।
3: मैं चाहता हूं कि आप सभी एक संकल्प अवश्य लें, आपके कार्यालय से कोई भी व्यक्ति यह महसूस करके वापस न जाए कि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। मेरा ये आप लोगों से आग्रह, जो नागरिक आपके पास आता है साथियों, वह किसी मजबूरी में ही आपके पास आएगा, और इसलिए कि बात को धैर्य पूर्वक सुनिए, उसे सम्मान दीजिए और बार बार वो चक्कर न लगाने पड़े। याद रखिएगा कि नियम जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जनता को परेशान करने के लिए सरकार नियम में बना।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं। इसका परिणाम ये है कि आज युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के मेहनत, योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं।
2: साथियों, मुझे दो बात याद आ रही है कि हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है, यही भरोसा यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में प्रदेश के 2,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 11.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 2,00,000 युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी भलीभांति परिचित हैं कि पहले की सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों युवाओं का शोषण होता था। हमने युवाओं के शोषण से बचाने के लिए न केवल निगम बनाया, बल्कि कानून बनाकर उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज कुरुक्षेत्र की प्रजापति धर्मशाला में गुरु दक्ष प्रकाशोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा और महाराजा दक्ष की प्रजापति जयंती की शुभकामनाएं दी। श्री गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी संतों, महापुरुषों और समाज सुधारकों की जयंती राज्य स्तर पर मना रही है, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे समाज के मार्गदर्शक होते हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने प्रजापति सभा द्वारा शिक्षा संस्थान शुरू किए जाने की सराहना की। मीडिया से बातचीत में संसद में नीट परीक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर रणवीर गंगवा ने कहा,
4: जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि युवाओं के भविष्य से अहम हमारे लिए और कुछ भी नहीं है, और जो शामिल है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी करने का काम किया, उसके बाद में इस विषय पर बोलने को रहने जाता।
1: उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार फास्ट ट्रैक अदालतों सहित कड़े प्रावधान लागू किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राज्य गीत भी गाए जाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्कूल में सप्ताह में एक दिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बाद हरियाणा राज्य गीत का सामूहिक गायन करना अनिवार्य होगा। शिक्षा

निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि इस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना बताया गया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 7 पुरानी और 5 नई शिकायतों सहित कुल 12 मामलों की सुनवाई की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 मामलों में अगली बैठक में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हिदायत की है। उन्होंने बताया कि गांव हरिपुरा के राशन गबन मामले की शिकायत पर संबंधित डिपो होल्डर के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। सेक्टर 19 में हरित पट्टी विकसित न किए जाने पर अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में संयुक्त जांच समिति गठित की गई। इस तरह DAV कॉलोनी में सीवर लीकेज से क्षतिग्रस्त मकान के मामले में पात्र परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने आज करनाल में जिला कारागार, नागरिक अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर और महिला पुलिस थाना का दौरा कर यहां प्रदत्त सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेल में महिला कैदियों व बंदियों से बातचीत की। सुश्री मीना परमार ने नागरिक अस्पताल और जिला जेल में सफाई व्यवस्था, खासकर महिला शौचालयों की हालत को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने लोक सेवा की भावना से काम करने का आग्रह किया। कुरुक्षेत्र में गुरु दक्ष प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया और हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन हरियाणा राज्य गीत के सामूहिक गान को अनिवार्य किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारों की छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। लोक सभा ने अज जनतक प्रीख्यावां च अनुचित तरीकों की रोकथाम बारे सोध बिल 2024 पास किया। अज अध्यात्मक अते विद्यक गुरुआं नूं समर्पित गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्म दिवस साल नूं मनाउण लई अज तों सूबा व्यापी संकल्प अभियान की शुरुआत। पंजाब पुलिस ने साइबर विधि धोखाधड़ी के मामलों च तुरंत कार्रवाई लई E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा च कई थावां ते अते केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच 30 ते 31 जुलाई नूं भारी तो बहुत भारी मीह पैण बारे येलो ते ओरेंज अलर्ट जारी कीता। अते राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत दे गुलवीर सिंह ने मर्दां दी 10,000 मीटर दौड़ विच चांदी दा तमगा जीत के इतिहास रच दित्ता है। ते हुण खबरां विस्थार नाल। लोक सभा ने अज जनतक प्रीख्यावां विच अनुचित तरीकों की रोकथाम बारे सोध बिल 2026 पास कर दिता है। यह बिल जनतक प्रीख्यावां च अनुचित तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 च सोध करदा है। इस बिल विच 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ते दोषी अपराधियों की जायदाद जब्त करन वर्गियां सख्त सजावां की व्यवस्था शामिल है। मामलों के तेजी नाल निपटारे नूं यकीनी बनाउण लई बिल विच हरेक राज सरकार ते केंद्रीय शासित प्रदेश नूं रोजाना सुनवाई लई विशेष फास्ट ट्रैक अदालतां स्थापित करन दे निर्देश दित्ते गए ने। इस विच इह वी व्यवस्था है कि अपराधां दी जांच पुलिस थाने विच जानकारी दर्ज होण दी तरीक तों 2 महीनियां दे अंदर पूरी होनी चाहीदी है। इस तों इलावा मामले दी सुनवाई चार्जशीट दाखल होण दी तरीक तों 3 महीनियां दे अंदर पूरी होनी चाहीदी है। बिल ते चर्चा दा जवाब दिंदिआं अमला जनतक शिकायतां दे न्याय राज मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिल विच सोध कानून नूं होर सख्त बनाउण ते छेती न्याय दवाउण लई कीती गई है।

0: जितेंद्र सिंह ने किया।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: बिल पास होने तो बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई पल के सवेरे 11 बजे तक ले मुलतवी कर दी थी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम सोध बिल 2026 नूं भी पास कर दिता है। यह बिल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम एक्ट 1971 विच होर सोध करेगा। तजवीजशुदा बिल वंदे मातरम नूं राष्ट्रीय गीत जनगण मन वांग ही विधानिक रक्षा प्रदान करेगा। इन्हां अपराधां लई 3 साल तक की कैद, जुर्माना जां दोवें सजा योग ने। बिल ते चर्चा का जवाब देंदे हुए गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल विच सोध सिर्फ एक विधानक तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भारत की भावना, राष्ट्रीय चेतना, सभ्याचार, विरासत ते आजादी संग्राम दे आदर्शां प्रति समूहिक वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। अज गुरु पूर्णिमा, जिसनों व्यास पूर्णिमा भी कहा जा रहा है, अध्यात्मिक विद्यक गुरुआ नूं समर्पित मनाई जा रही है। इस मौके लोग अपने गुरुआ नूं याद करते हैं ते उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करन तो बाद इस मौके अपना पहला उपदेश दिता सी। भगवान बुद्ध ने बोध गया तो सारनाथ की यात्रा की थी ते पूर्णमाशी वाले दिन अपना उपदेश दिता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके सारयां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्म दिवस साल नूं मनाउण लई अज तों सूबा व्यापी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश गुरु रविदास जी के बराबरी, मान, समाजिक सद्भावना ते समाजिक न्याय दे सदीवी संदेश नूं सूबे भर विच फैलाउणा है। सूबा बीजेपी प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह देशव्यापी मुहिम, जो अज तो गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके ते शुरू हुई है, 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। इस दौरान कई धार्मिक प्रवचन, सभ्याचारक प्रोग्राम ते भाईचारक लंगर होंगे। श्री ढिल्लों ने दसिया कि अज श्री गुरु रविदास महाराज दीप महोत्सव करवाया जा रहा है, जिस दौरान पंजाब भर के गुरु रविदास मंदिरां विच भजन दे नाल दीवे जगाए जाणगे। तो बाद आज तो 10 सितंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंडन अभियान चलाया जाएगा, जिस तहत सीर गोवर्धनपुर वाराणसी विखे गुरु रविदास जी के जन्म स्थान तो लेके गए पवित्र कलश नूं रस्मी तौर ते प्राप्त किया जाएगा ते पूरे पंजाब च रविदास मंदिरां नूं सत्कार नाल सौंपिया जाएगा। श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा 5 अक्तूबर तो 5 नवंबर तक गुरु रविदास जी के बराबरी, समाजिक सद्भावना ते राष्ट्रीय एकता के सुनेहे नूं लेके डेरा सचखंड बंडला जलंधर तो सीर गोवर्धनपुर वाराणसी तक जाएगी। जिक्रयोग है कि पंजाब सरकार वालों भी श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित उन्होंने जीवन फलसफे ते महान सिक्ख्यावां नूं लोकां तक पहुंचाउण लई सूबे भर में चलाई जा रही विशेष जागरूकता मुहिम तहत उन्होंने जीवन विचारधारा और उपदेशों के आधारित प्रेरणादायक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जा रही है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ E0 FIR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ E0 FIR ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ E0 FIR ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ FIRs ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DGP ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो कुछ पंजाबी गीत। हुन सुनवा रहे अगला गाना, आवाज है अमरिंदर गिल दी।

0: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को नमस्कार।

0: लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना। स्वर गीत और संगीत कैलाश खैर का था। पराया धन, अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए अब अभिजीत और अलका याग्निक को सुनिए यस बॉस फिल्म में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आए हाय।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विने धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारी।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले,
2: ओले, ओले। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हाय।
5: और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, नीति मोहन और रैप सोफिया अशरफ की आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने, फिल्म का नाम है जब तक है जान।

0: बड़ी पहुंच
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: तो लो हुण सुनो कुछ पंजाबी गीत। प्रोग्राम दा पहला गीत पेश कर रहे हैं सुखशिंदर शिंदा ते जैसी पीती मिली जुलियां आवासां विच।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए सतीश भार्गव की लिखी झलकी, चलो शुरू हो जाओ।
1: बोलर्स गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद को बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लिया, खेल भर दिया सामने की तरफ बैट के।
2: बाबूजी मेरी फाइल निकाल दीजिए। बाबूजी मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे बैठो, ठहरो, थोड़ा रुको। वाह क्या बात है, अरे मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, थोड़ी आवाज तो बढ़ाओ यार। बाबूजी आप 3 दिन से रेडियो सुन रहे हो तो तू चाहता क्या है, क्या काम ही काम करे? अरे देख नहीं रहा मैच कितना जोरों पे चल रहा है? वाह क्या बात है यार, मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, आवाज बढ़ाने यार।
3: मेरी फाइल का क्या होगा, रोज ऑटो से आता हूँ, किराया भी खराब होता है और समय भी खराब होता है।
4: तो मैं क्या करूँ, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हारी फाइल भी देख लूंगा। अब एक काम करो, तुम 15 दिन बाद आना।
5: अच्छा तो बाबूजी 15 दिन बाद मैं जरूर आ जाऊँ, मेरा काम हो जाएगा?
4: हाँ हो जाएगा।
6: खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल के सीधी कर दे सबकी चाल, कैया गंगा किनारे
7: प्रकाश। प्रकाश भाई क्या बात है, पान वान खूब खाए जा रहे हैं?
8: लो भैया शर्मा जी छुट्टी पर चले गए।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो भाई मजे ही मजे हैं।
9: अरे वाह भाई, मुझे तो 50 रुपए निकलवाने बैंक जाना है, मैं तो कल देर से आऊंगी।
8: भैया तो अपन कौन से जल्दी आने वाले हैं, अपनी तो वैसे ही 9 बजे खुलती है।
7: भैया बड़ा परेशान किया था शर्मा जी ने, जब देखो एक ही रट, काम करो, ऑफिस में ठहरना भी यार मुश्किल कर देते थे। इसीलिए तो अपने शंकर जी न मीटिंग में आते हैं और न काम ही करते हैं।
9: अरे उनका ही क्या, अपने यहाँ तो कितनी महिलाएं या तो देर से आती हैं और अगर आ भी गईं तो बस उनके मुंह से हमेशा सुन लो।
7: क्या सुन ले बताओ तो?
9: यही कि मुन्ने के टेस्ट चल रहे हैं। अरे साहब को क्या हुआ मालूम है, अचानक चक्री की तरह नाचने लगे। हाँ
7: अरे पी रखी होगी इसीलिए तो चक्री की तरह नाच रहा होगा गंजा।

0: भाई हमारे शंकर की कैसी अच्छी कट रही है, ऐश कर रहा है।
1: अरे मैंने तो एक दफा उन्हें ये शेर पढ़ते सुना था।
2: शेर पढ़ते? हाँ। कौन सा?
1: चलो सुना? सुनो। कहो आंधियों से आए,
0: वाह वाह वाह,
1: कहो बर्क से जला दे,
2: वाह वाह वाह वाह।
1: अरे आगे तो सुनिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
1: ये रहा मेरा नशे मन, कोई आंख तो उठा दे।
2: वाह वाह वाह वाह भाई,
0: बहुत खूब बहुत।
2: भाई प्रकाश,
0: रमेश जी
2: यार तुम भी तो कुछ सुनाते हो।
0: इन्होंने शेर सुना है, मैं आपको चीता सुना दूं?

0: था।
1: अरे वाह वाह वाह वाह भाई वाह,
2: बहुत
1: भाई प्रकाश।
2: रमेश जी
1: यार तुम भी तो कुछ सुनाते हो।
2: इन्होंने शेर सुनाया, मैं आपको चीता सुना दूं?
1: हाँ चीता, चीता बिल्ली कुत्ता कुछ सुनाओ यार।
2: चलिए एक दिन बैठे बैठे ऐसी तबीयत चली,
0: अरे वाह,
2: क्यों न आपकी बार साइकिल से चले दिल्ली,
1: वाह,
2: ब्रेक तब कसा लिए, हवा भी ठीक देख ली, कहते हुए हम ये चले हनुमान कर भली,
1: वाह,
2: आई तब बुरी घड़ी,
0: अरे
2: दृष्टि शनि की पड़ी, दूर भी गए न थे कि साइकिल से बस लड़ी।
0: अच्छा।
2: और हम बेजान से मेड इन जापान से हॉस्पिटल में नर्स का सिंगार देखते रहे, मर गया मरीज हम बुखार देखते।
1: वाह भैया वाह वाह वाह। भाई प्रकाश सुना है कि गंजे ने किसी मंत्री के क्लर्क को पटा रखा है, इसीलिए ऐश कर रहा है।
0: अरे हाँ, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ कहने की।
1: हाँ,
2: और इधर शंकर का कहना है कि भैया नौकरी से पहले उन्होंने इतने पापड़ बेले हैं कि बता नहीं सकते, अब तो आराम करेंगे ही।
0: हाँ सही है, मगर वो शर्मा जी सबको खींचते रहते, लेकिन शंकर जी से कहने की कुछ हिम्मत नहीं करते। हाँ।
2: अरे वो तो अपने नईम भाई को ले लो, उनकी बीवी भी इसी ऑफिस में है, खाली इसीलिए दफ्तर आ जाते हैं, नहीं तो उनका कहना है कि आज तक मैंने 35 साल काट दिए और मुश्किल से कभी ऑफिस आ जाता हूँ, वो भी बीबी को लेने।
1: भैया नौकरी तो होती ही है मौज मस्ती के लिए। अरे अपना जो कैंटीन का कुक है ना, पहले वो एक होटल में काम करता था।
0: अच्छा।
1: बेचारा सवेरे 7 बजे से भजिए तलना शुरू करता था और रात के 11 बजे तक भजिए कचौरी और दूसरे सारे काम किया करता था। मैंने खुद देखा है उसे कि पसीने पसीने हो जाता था बेचारा। जब लेकिन सरकारी कैंटीन में जगह निकली तो उसने अपनी एप्लीकेशन दी, मालूम है क्या लिखा था?
0: बताइए बताइए क्या लिखा?
1: उसने लिखा था कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए, मैं बहुत ईमानदारी तथा लगन के साथ काम करूंगा।
2: तो फिर क्या हुआ?
1: बस नौकरी पर रख लिया, उसी दिन से उसके भाव जो थे वो ऐसे बदले कि बिल्कुल ही बदल गए।
0: अरे भाई भाव बदल गए, वो कैसे?
1: अरे अब तो वो अपनी शर्त लगाता है कि अच्छा? देखो भाई मैं 1 किलो गुलाब जामुन से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 30 आलू बड़े, 30 समोसे और 2 किलो भजिया।
0: अच्छा।
1: चाहे तो कैंटीन का मैनुअल उठा के देख लो, इससे ज्यादा काम करने के लिए नहीं लिखा है उसमें।
0: अच्छा। हेलो एवरीबॉडी।
1: अरे भाई आपने तो आज बहुत ही देर कर दिया आने में।
0: रमेश अब वो क्या बताऊं, वो रात को बहुत पुरानी पिक्चर आ रही थी तो उसे देखने के लिए जागती रही और सुबह फिर देर से उठी, बस इसीलिए आज देर हो गई। फिर सोचा कि आज शर्मा जी भी तो नहीं है।
2: हाँ भाई शर्मा जी के रहते तो बड़ा ही मुश्किल होता है।
0: हाँ अब मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती, अपनी तो भाई आदत है।
1: हाँ, कैसी आदत?
0: हाँ, यही कि देर से आना है तो आना है।
3: अच्छा।
0: जो करो तो कर लो। खैर अब मैं तो अपनी सीट पे जा रही हूँ।
1: हाँ, सीट पे जा रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा काम है सीट पे?
0: नहीं जी अब सोच रही हूँ कि जाड़े तो चल ही रहे हैं और मुन्ने का स्वेटर पूरा नहीं हुआ है तो उसे पूरा कर लूँ।
2: ये तो अच्छी बात है।
0: और फिर शर्मा जी के रहते हुए तो तुम्हें मालूम ही है बड़े छुप छुप के बुनना पड़ता है। अच्छा तुम लोगों में से कोई बताएगा अभी कितने दिन तक छुट्टी पे है शर्मा जी?
3: अरे हाँ हाँ जहाँ तक मुझे मालूम है 15 दिन की छुट्टी।
0: इतने दिन में तो मैं 2 स्वेटर बुन लूंगी। अरे इसी खुशी में चलो मैं तुम सबको चाय पिलाती हूँ।
3: चलो चलो
0: चलो चलो। लल्लू, ओ भैया लल्लू।
2: किसे बुला रही हो? सीनियर चपरासी तो पान की दुकान पर है और जूनियर चपरासियों को जाते आते काम समझा गए, मगर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं है।
0: अजी तनख्वाह के दिन तो बहुत से चपरासी दिखाई देते हैं, मगर बाकी दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे दफ्तर 2-3 चपरासियों के सहारे ही चलता है।
1: भैया छुट्टी का अधिकार सबका है। एक बाबूजी को मैं जानता हूँ जो साल में 50 CL लेते हैं।
0: 50 CL?
3: अरे वो कैसे?
1: अरे भाई बहुत आसान।

0: जब दफ्तर न आना हुआ तो घर से फोन कर दिया, बीमार हूँ नहीं आ सकता। फिर दो चार दिनों में आकर ज्वाइन कर लिया।
1: तो कोई पूछता नहीं होगा, एप्लीकेशन भी नहीं मांगता।
0: अरे भाई, एप्लीकेशन मांगने वाले ने ही तो उन्हें ये तरकीब बताई है। फोन करो घर बैठे और बाद में आओ और दस्तखत कर दो।
1: वाह भाई वाह, मान गए। क्या क्या तरकीबें बनाई हैं लोगों ने।
2: ओहो, लंच हो गया। आज तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलो भाई चलो, लंच कर लेते हैं।
0: अरे लंच पे तो चलेंगे यार। प्रकाश, एक सलाह लेनी थी आपसे।
2: हाँ हाँ बोलो, क्या बात है।
0: बात यह है भैया कि एक मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ।
1: स्कूल?
0: हाँ।
1: वाह।
0: उसका कोई अंग्रेजी नाम तो बताओ।
2: अरे कोई भी अंग्रेजी नाम रख दो, जैसे मिनी कॉन्वेंट, शॉर्ट कॉन्वेंट, लॉन्ग कॉन्वेंट, चलेगा।
1: मॉरल कॉन्वेंट।
2: हाँ बिल्कुल। मगर यार तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएगा कौन?
0: स्कूल में पढ़ाएगा कौन? अजी हम पढ़ाएंगे और मेरा बेटा पढ़ाएगा।
2: मगर तुम तो सर्विस में हो ना।
0: सर्विस में है तो क्या है, अभी बस स्कूल की एक शिफ्ट लगाऊंगा, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और फिर 1 बजे आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा।
2: मगर तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो और तुम्हारा लड़का भी मैट्रिक पास है, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री भी आती रही।
0: सप्लीमेंट वो तो क्या हुआ भाई? अरे भाई, वो लोग जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भिजाते हैं, उन सबको क्या अंग्रेजी आती है?
2: ये बात तो सही है।
0: अब तो अपना वो कलुआ कल अपने बच्चे को लेकर आया था, बोला भैया जी से कहना मुझे अपने लड़के को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, कोई स्कूल हो तो बताओ।
2: हाँ भाई सच है, आजकल हर कोई अंग्रेजी स्कूल की तरफ दौड़ रहा है।
0: अच्छा भाई, तो फिर मैं चलता हूँ।
2: अरे अरे, अभी अभी आए थे और अभी अभी चले।
0: बेटा ये नौकरी है, इसे मेरी तरह से करोगे तो ऐश करोगे।
2: हाँ भैया बिल्कुल ठीक कहते हो।
0: अरे यार प्रकाश, एक किस्सा याद आ गया।
2: क्या वही कि नौकरी कैसे करते हैं?
0: नहीं नहीं, एक दूसरा किस्सा।
2: चलो ठीक है, ये भी सुना दीजिए।
0: भैया एक बार मैं अपने गांव गया था, वहां मुझे वर्मा जी मिल गए। बोले भाईजान क्या आप भोपाल जा रहे हैं?
2: फिर
0: वहां दफ्तर में जाकर बता देना कि मैं अभी 2-4 दिन और दफ्तर नहीं आ पाऊंगा।
2: फिर तुमने ले जाकर दरखास्त दे दी होगी।
0: नहीं यार, मैं वर्मा जी के दफ्तर गया तो वहां कुर्सी पर एक पुराना कोट वर्मा जी का टंगा हुआ था।
2: फिर
0: मैंने पड़ोस वाले से बस इतना कहा, वर्मा जी, बस इतना ही कहा था कि वो सज्जन बोले, अजी साहब वर्मा जी यही थे, अभी उठकर चले गए होंगे, ये देखिए ना उनका कोट टंगा है, आते ही होंगे।
2: वाह भाई वाह।
0: फिर क्या, मैंने उन्हें बताया कि भैया वर्मा जी ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि 2-4 दिन और नहीं आएंगे, उनका कोट ऐसे ही संभाल कर टंगे रहने देना। और तो और भैया और सुनो, जब मैंने वर्मा जी की टेबल पर देखा तो एक तरफ लिखा था, हिंदी में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए, और दूसरी तरफ उनके हाथों का लिखा हुआ था, ऑफिस में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

तो ये थी झलकी, चलो शुरू हो जाओ। लेखक सतीश भार्गव, निर्देशन किया अजीमुद्दीन ने। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनिधि चौहान और केके के गाए गीत से, बोल इरशाद कामिल के संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम खट्टा मीठा।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुयो विनायक करो न सीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
6: अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में अब सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे

0: ये जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
4: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स. आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू.

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो की आवाज में एक दीवाना था फिल्म का गीत, बोल जावेद अख्तर और ब्लेज के संगीत ए आर रहमान का।

निशांत खान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, आवाज जावेद अली की, फिल्म का नाम ये साली जिंदगी।

ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अलीशा मेंडोंसा और मोहित चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित

0: कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
3: आज राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसद ही नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
4: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
5: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश

0: निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
2: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमरीश सक्सेना।
3: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और

0: इंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तलत महबूब के गाए गीत से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: लीजिए अब मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म राजकुमार में। हसरत जयपुरी की लिखी इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्म में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में साथ दे रही हैं लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आसमी के लिखे इस गीत की धुन बना

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में सुना। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। अब दीजिए इजाजत।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: इसने कहा है कि शोधन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मारे,

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे

0: भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।
1: है दिल

जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे। लोग

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: इसमें ऊपर लारा की दलों में लोग बाबा ने मुझे कह रहा था मारा करते नहीं पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खासतौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: लैंडक्लियर बाय।
1: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
2: जंगल में

0: किसी ने ना देखा।
1: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमती फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
2: आज दहिया का याद आवत है,
3: तबीयत नरम है आज।
2: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
3: नींद नहीं आती रात भर।
2: नींद नहीं आवत है पर का है रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है।
3: दुखता उखता नहीं, कसमसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
2: ओ, ये तो नवा रोग लगा थे। सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
3: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
2: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
3: कैसे।
4: बराबर लेटो,
3: भाता है ना ऐसा लेटना।
2: नींद ना आए तो क्या फायदा।
3: अच्छा ये कैसा,
2: दुई कौड़ी का।
3: तो फिर कैसे,
2: इधर घूमो करवट,
3: पल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
2: गोबर गणेश कहीं की।
1: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं 1951 में बाजी,
5: मिस्टर जो डिक्रूज सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता।
2: उधर मैं टेलीफोन देखता था, तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
5: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
2: छोकरी छोकरी टेलीफोन छोकरी के हाथ में था।
5: यस
2: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता।
5: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काय को उसका बात करता है। डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
6: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
2: जाएगा। राइट राइट,
5: मैं सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया।
6: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
2: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
5: यू शट अप। सुजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है, तुम क्या बोला।
2: मैं बोला कि तुम सिस्टर कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है, मैं तुम लोगों छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
7: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा।

0: आजादी।
1: आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

पहाड़ कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस। वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।

0: जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहाँ गया।
1: मेरी दुनिया

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: जब पहली बार गूंजे थे ये शब्द,
1: ये आकाशवाणी है।
0: जब देश नहीं था आजाद, रेडियो था एक चमत्कार, आवाज ही थी जुड़ाव का एक जरिया।
1: 1936 से लेकर 90 वर्ष की सुनहरी यात्रा में
0: आकाशवाणी ने न सिर्फ समाचार सुनाए बल्कि देश की नब्ज को महसूस भी किया।
1: जब देश ने आजादी की सांस ली, आकाशवाणी ने वो पल सुनाया। जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को छुआ, आकाशवाणी ने वो गर्व गुनगुनाया।
2: लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
0: जब भूकंप, बाढ़, युद्ध या महामारी आए, आकाशवाणी बना विश्वास की आवाज।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को आपके मित्र रदा मुराद का सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती करता हूँ कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, इसे अपनी सुरक्षा का सबसे मजबूत तरीका समझें।
1: 90 वर्ष का सफर, अनगिनत यादें, आज भी वही विश्वास, भरोसा,

0: वही अपनापन।
1: ये आकाशवाणी है, हर दौर हर दिल की आवाज,
0: हमारी और आपकी पहचान। आकाशवाणी।
2: FM 107.2 MHz से आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। लोक सभा ने जनतक प्रक्रियावां अन्यायपूर्ण साधना दी रोकथाम शोध बिल 2026 पास कर दिता है। लोक सभा ने एक राष्ट्र एक चोण नाल संबंधित बिलां दी जांच कर रही सांझी संसदी कमेटी दा कार्यकाल इस साल दे सर्द रुत सैशन दे आखिरी हफ्ते दे पहले दिन तक वधा दिता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अज नवे चुने गए समूह डी कर्मचारियों नूं नियुक्ति पत्र भेंट किए अते उन्हां नूं जनतक सेवा की भावना नाल काम करन दी अपील की। कुरुक्षेत्र विच गुरु दक्ष प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवार ने कुरुक्षेत्र के टांड रोड से प्रजापति सभा द्वारा बनाए जाने वाली एक वित्तीय संस्था का नींव पत्थर रख्या अते प्रजापति सभा नूं 21 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। हरियाणा सिक्ख्या निर्देशालय ने हफ्ते विच एक बार सरकारी स्कूलों विच हरियाणा राज गीत का सामूहिक गाण लाजमी कर दिता है। हरियाणा राज महिला कमीशन की उप चेयरमैन मीना परमार ने करनाल के जिला जेल सिविल हस्पताल वन स्टॉप सेंटर अते महिला पुलिस स्टेशन का दौरा करके उत्थे दित्तियां जा रही सहूलतों का जायजा लिया। भिवानी जिले के तनाना पिंड की धी अते भारतीय फौज की मुक्केबाज साक्षी चौधरी टांडा राष्ट्रमंडल खेडां दे क्वार्टर फाइनल मैच विच उत्तरी आयरलैंड दी कैटलिन प्राइज नूं 5-0 नाल हरा के सैमीफाइनल विच प्रवेश कीता अते हरियाणा दे 9 जिले विच 3 अगस्त 2026 नूं होण वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा दे शांतिपूर्ण सुरक्षित अते सुचारू संचालन नूं यकीनी बनाउण लई 9 पुलिस ने भारतीय वाहनां लई एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मुख प्रादेशिक खबरां खत्म हुईआं। यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते थोड़ी ही देर च तुसी सुनोगे पंजाबी गीतां दा सजाया प्रोग्राम सुरसांझ।
3: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
2: ते हुण पेश है पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। सारे सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं बप्पू मान दे गाए इस गीत तों।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: एक बार फिर बप्पू मान दी आवाज़ तुहाडे रेडियो सेट से।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के,
1: और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतों का प्रोग्राम सुरसांझ, ते उन बारी अगले गीत थी आओ हुण सुनने गुरसेवक मान की आवाज़ में अगला गाना।

0: इस गीत विच आवाज सी हरभजन मान दी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए एक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तानिया हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समा

0: Chihuahua.
1: FM 107.2 MHz से ये आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात के 11:05 होए ने, हुण साडे केंद्र तो अज दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानू इजाजत दिओ। जय हिंद।